ओनली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: प्रार्थना अभवत्। प्रार्थनया मनः शान्तम् अभवत्। इदानीम् एकाग्रतया अभ्यासं कुर्मः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सम्भाषणार्थं मया सह मम सखी स्मिता अस्ति। अद्य वयं गन्तुं, श्रोतुं, पठितुं, खादितुम् इत्येतान् शब्दान् शृण्मः। तेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदामः। आज हम नए शब्द सुनेंगे, जैसे कि गन्तुं, श्रोतुं, पठितुं, खादितुं और उनका उपयोग करना सीखेंगे। गन्तुं का मतलब क्या होता है या पठितुं का मतलब क्या होता है, पहले एक वाक्य सुनिए। रामः पठितुं शालां गच्छति। राम पढ़ने के लिए शाला जाता है। रामः पठितुं शालां गच्छति। राम क्या करने शाला जाता है? रामः किं कर्तुं शालां गच्छति? तो उत्तर होगा, रामः पठितुं शालां गच्छति। यहाँ राम शाला जाता है, यह क्रिया होगी और क्रिया का उद्देश्य क्या है? पढ़ना। इसलिए राम शाला जाता है क्या करने? तो उत्तर होगा पढ़ने या पढ़ने के लिए। क्या करने संस्कृत में बोलते हैं किम कर्तुम। उत्तरम है, उत्तरम अस्ति, पढ़ने यानी पठितुम। अग्रजा पठितुम विद्यालयम गच्छति। अग्रजः धावितुम क्रीडांगणम गच्छति। तो पठति क्रियापद का तुमुन रूप हुआ पठितुम, धावती क्रियापद का तुमुन रूप हुआ धावितुम, करोति क्रियापद का तुमुन रूप होता है कर्तुम। अस्तु, अभ्यासं कुर्मः। अहम् वदामि पठति। स्मिता भगिनी वदति पठितुम। पठति
1: पठितुम।
0: खादति
1: खादितुम।
0: धावति
1: धावितुम।
0: उत्तम। वैसे ही शृणोति इसका रूप होगा श्रोतुम। शृणोति
1: श्रोतुम।
0: करोति
1: कर्तुम।
0: वदति
1: वक्तुम।
0: गायति
1: गातुम।
0: उत्तम। शृण्वन्तु एकं दीर्घं वाक्यं शृण्वन्तु। बालकः संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृतं वक्तुं, गीतं गातुं, श्लोकार्थं ज्ञातुं संस्कृतवर्गं गच्छति। है ना, बहुत सीख लिया ना। तो बालक देखिए क्या क्या करने संस्कृत वर्ग जाता है। संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृत सुनने के लिए। संस्कृतं वक्तुं, संस्कृत बोलने के लिए। गीतम गातुम, गीत गाने के लिए। श्लोकार्थम ज्ञातुम, श्लोक का अर्थ जानने के लिए संस्कृत वर्गम गच्छति। पुनः एकवारं संस्कृत वाक्यम, दीर्घम संस्कृत वाक्यम शृण्वन्तु। बालकः संस्कृतं श्रोतुम, संस्कृतं वक्तुम, गीतम गातुम, श्लोकार्थम ज्ञातुम संस्कृत वर्गम गच्छति। उत्तम। इदानीं वयम् एकं संभाषणं शृण्मः। लता एका बालिका, सा एकं गीता पुस्तकं क्रेतुम् इच्छति, अतः पुस्तकापणं गच्छति। शृण्मः पुस्तकापणे किं संभाषणं भवति? तत्र एकः अस्ति विक्रेता, ग्राहिका अस्ति लता। अहं चारुहासिनी, अहं विक्रेता भवामि। स्मिता भगिनी लता ग्राहिका भवति। शृण्वन्तु। आगच्छतु भगिनी।
2: धन्यवादः।
0: किं क्रेतुम् इच्छति भवती?
2: नूतनं गीतापुस्तकं क्रेतुम् इच्छामि।
0: एवं वा, कति रूप्यकाणि दातुं शक्नोति?
2: शतरूप्यकाणि।
0: ओहो, तत्र तु बहुविधानि गीतापुस्तकानि द्रष्टुं शक्नोति।
2: कृपया दर्शयतु।
0: हा, पश्यतु, एतानि सर्वाणि गीतापुस्तकानि सन्ति, पश्यतु।
2: हा, एतत् वर्णमयं पुस्तकं क्रेतुम् इच्छामि।
0: शोभनं, शोभनं पुस्तकम्।
2: एतस्य कति रूप्यकाणि?
0: तस्य 20 रूप्यकाणि।
2: केवलं 20?
0: आम्, केवलं 20 रूप्यकाणि।
2: अस्तु, अहम् एतत् स्वीकरोमि। अत्र सन्ति 20 रूप्यकाणि।
0: उत्तमं। शृणोतु, जीवनं यशस्वी कर्तुं प्रतिदिनं गीता अध्ययनं करोतु।
2: आम्, करोमि।
0: उत्तम। तो संभाषण समझ में आया। लता भगिनी गीता पुस्तकं क्रेतुम् आपणं गच्छति, तत्र बहूनि पुस्तकानि पश्यति। सा ₹20 दत्त्वा एकं नूतनं गीता पुस्तकं क्रीणाति। विक्रेता अन्ते वदति, जीवनं यशस्वी कर्तुं प्रतिदिनं गीता अध्ययनं करोतु। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। जीवन यशस्वी करने के लिए रोज गीता का अध्ययन कीजिए। ऐसा संदेश देके विक्रेता लता भगिनी को राम राम बोलता है। समझ में आया। तो इसमें शब्द कौन से आए? क्रेतुम, दातुम, द्रष्टुम। उत्तम। अब आज का पाठ खत्म हो गया है। धन्यवाद। अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्।
3: श्री गणेशाय नमः।
4: श्री गणेशाय नमः।
3: आरामः कल्पवृक्षाणां।
4: आरामः कल्पवृक्षाणां।
3: विरामः सकलापदां।
4: विरामः सकलापदां।
3: अभिरामस्त्रिलोकानां।
4: अभिरामस्त्रिलोकानां।
3: रामश्रीमांसनः प्रभु।
4: रामश्रीमांसनः प्रभु।
3: तरुणौ रूपसंपन्नौ।
4: तरुणौ रूपसंपन्नौ।
3: सुकुमारौ महाबलौ।
4: सुकुमारौ महाबलौ।
3: पुण्डरीकविशा विशालाक्षौ।
4: पुण्डरीक विशालाक्षौ।
3: चिरकृष्णाजिनाम्बरौ।
4: चिरकृष्णाजिनाम्बरौ।
3: फलमूलाशिनौ दान्तौ।
4: फलमूलाशिनौ दान्तौ।
3: तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
4: तापसौ ब्रह्मचारिणौ।
3: पुत्रौ दशरथस्यैतौ।
4: पुत्रौ दशरथस्यैतौ।
3: भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।
4: भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ।
3: शरण्यौ सर्वसत्त्वानां।
4: शरण्यौ सर्वसत्त्वानां।
3: श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां।
4: श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां।
3: रक्षः कुलनिहन्तारौ।
4: रक्षः कुलनिहन्तारौ।
3: त्रायेतां नौ रघुत्तमौ।
4: त्रायेतां नौ रघुत्तमौ।
3: आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा।
4: आतसज्जधनुषा विशुस्पृशा।
3: वक्षया शकुनिशङ्गसङ्गिनौ।
4: वक्षया शकुनिशङ्गसङ्गिनौ।
3: रक्षणाय मम रामलक्ष्मणवग्रतः।
4: रक्षणाय राम लक्ष्मणावग्रतः।
3: पति सदैव गच्छताम्।
4: पति सदैव गच्छताम्।
3: सन्नद्धः कवची खड्गी।
4: सन्नद्धः कवची खड्गी।
3: चापबाणोधरो युवा।
4: चापबाणोधरो युवा।
3: गच्छन् मनोरथोऽस्माकम्।
4: गच्छन् मनोरथोऽस्माकम्।
3: रामः पातु स लक्ष्मणः।
4: रामः पातु स लक्ष्मणः।
3: रामो दाशरथिः शूरो।
4: रामो दाशरथिः शूरो।
3: लक्ष्मणानुचरो बली।
4: लक्ष्मणानुचरो बली।
3: काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः।
4: काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः।
3: कौसल्येयो रघुत्तमः।
4: कौसल्येयो रघुत्तमः।
0: स्तोत्र पठनम् अभवत्। आज हमारे इस संभाषण के इस एपिसोड के 16 लेसन्स पूरे हो गए। 17वां चल रहा है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। लोग लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है कि अगर कार्यक्रम का समय थोड़ा लंबा हो तो अच्छा होगा। जरूर अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, सूचनाएं भी भेजिए। आपको कार्यक्रम कैसा लगता है जरूर बताइए। हम अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेंगे। इदानीम शांति मंत्र अनंतरम कार्यक्रम से समाप्ति। दुर्जन सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: एक टाका महत्व. रंग बिरंगे फूलों से सजी बगिया कितनी प्यारी लगती है. उन रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता देकर हम अपना स्नेह प्यार भी जताते हैं. अलग अलग रूप रंग व सुगंध होते भी कट्ठे सजाए फूल गुलदस्ते की शोभा बढ़ाते हैं. ऐसे ही भांति भांति पुष्पों से खूबसूरत हार बनता है. और हाँ, जब एक से एक व्यक्ति मिल जाए तो दोनों 11 लोगों के बराबर की ताकत बन जाते हैं. यानी एकता में है सच्चा सौंदर्य और शक्ति. लेकिन हम आज संसार और समाज में नजर डाले तो जहां तहां बिखराव ही बिखराव दिखाई देता है. किंतु याद रखें, बिखराव से टकराव और टकराव से समाज व्यवस्था बिगड़ जाती है, विकास रुक जाता है और प्रकृति के बजाय दुर्गति होने लगती है. लेकिन घर परिवार, समाज या संगठन में सभी के बीच में आपसी सामंजस्य हो, आपस में तालमेल हो, सभी एकमत से काम करते हो, काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन काम निपटाने में सब एक दूसरे के हाथ बटाते हो, तो कार्य की सफलता हुई समझो. वास्तव में यही एकता है. इसलिए कहा भी जाता, एकता का बल देता फल. सचमुच एकता में बड़ा बल होता है. विचारों में भिन्नता होते हुए भी सामूहिक रूप से एकमत हो रहते हो और मिलजुल करके कार्य करते हो, विविधता में भी तालमेल बनाए रखते हो, तो संगठन मजबूत हो जाता है. यही संगठन की शक्ति सामाजिक एकता कहलाती है. सचमुच ये वो महान शक्ति है जो बड़े बड़े कार्य को सहजता से संपन्न करा देती है. 5 पांडवों की सेना कितनी छोटी थी लेकिन उनकी एकता ने विशाल कौरव सेना को हरा दिया. सच पूछो तो ये

जादू का काम करती है। पांच उंगलियां मिलकर के मुट्ठी बन जाए तो ताकत सिद्ध होती है, परंतु अगर एक एक उंगली अलग अलग कार्य करे तो भोजन का एक ग्रास या निवाला उठाना भी कितना कठिन होता है। एक लकड़ी को तो सहज ही तोड़ सकते हैं, लेकिन 8-10 लकड़ियों का गट्ठर तोड़ना बड़ा मुश्किल। अर्थात एकता में ही रक्षा होती है। जिस घर, समाज या राष्ट्र में एकता हो वह स्वर्ग के समान भासता है। अतः एक बने और नेक बने, ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।

0: वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: हो रहा भारत में
2: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
1: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलप्रासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 008618514905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
6: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
7: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
8: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
9: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
9: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
3: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
10: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM के एल ई कनसु।
11: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
12: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ, ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ.
11: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
12: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
11: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831 24 86 286.
13: ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಹಾಗೂ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ, ಕನಸಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸುಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ, ಉದ್ಯಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ದಿನದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ರವಿವಾರ ದಿನಾಂಕ 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ಎಂಪವರ್ 365 ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಯವರೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಲು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9513519666. ಗಿಕೋನಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೂತನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಬೆಳಗಾವಿ. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಆನರ್ಸ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ 4 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್. 2026-27 ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. 10+2 ಪಿಸಿಎಂಬಿ, ಕೆಸಿಇಟಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ICAR ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟಾ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಅನುಭವಿ ಬೋಧಕ ವರ್ಗ, ಆಧುನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ತರಬೇತಿ ಅವಕಾಶಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08337200120 ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9071000774.
14: Attention all aspiring health leaders, here's an exciting opportunity from the School of Public Health under KLE Academy of Higher Education and Research, Belagavi. School of Public Health invites you to join the future public health leaders through its integrated BPH plus MPH program, a 5-year program open to students from all backgrounds. If you've completed pre-university college in science, commerce or arts, you're eligible to apply. And if you've completed a diploma, you can enter directly into the second year through lateral entry. Already a graduate? You're invited to join our 2-year MPH program. You study at a NAC A+ accredited

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुबर्णा रॉय, जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट है। ICMR NITM बेलगावी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर कार्य करने वाला देश का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। डॉक्टर सुबर्णा रॉय के नेतृत्व में संस्थान ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष, इंटरग्रेटिव हेल्थ केयर तथा पब्लिक हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर, हमारे वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: सबसे पहले तो अपने बारे में और अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा सा

0: मैं डॉक्टर सुवर्णा रॉय हूँ। बाई ट्रेनिंग मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, MSc PhD, और मैं पिछले 20 साल से ICMR में काम कर रहा हूँ। ICMR NITM जो है, जैसे आपने बताया, ये हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान संस्था है जो ICMR का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो इंटीग्रेटिव हेल्थ में काम करते हैं। बेसिकली हम लोग सब मॉडर्न साइंसेस बैकग्राउंड के साइंटिस्ट हैं और हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर शोध करते हैं। जैसे कुछ आता है जो आयुष के अंडर आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी, स्वारिकपा, नेचुरोपैथी, योगा, और कुछ होते हैं जो इसके बाहर का भी प्रैक्टिस होता है, जो दादी माँ के नुस्खे टाइप का जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, होम रेमेडीज, या फिर जो ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस है जो गांव में लोग यूज करते हैं, ट्राइबल हीलर्स होते हैं, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल बेल्ट्स में होते हैं। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे जो शोध है, जो इसमें से ऐसे बहुत सारा सॉल्यूशंस है जो एक्चुअली इफेक्टिव है, और उसके लिए जो शोध है वो हम लोग करते हैं। और जो स्टडीज हम लोग शुरू करते हैं वो फील्ड से शुरू होता है, जो कोई इसका प्रैक्टिस होता है या फिर जो आयुष से आता है उसका लेते हैं, करके उसका सेफ्टी स्टडीज करते हैं, उसका टॉक्सिसिटी का स्टडीज करते हैं, उसके बाद उसका मॉलिकुलर मैकेनिज्म हम लोग डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं, जो उसका केमिस्ट्री है, जो अगर पौधों से काम होता है तो ये पौधों में क्या क्या कंपोजिशन है उसका करते हैं, सीजनल वेरिएशन का करते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारा एनिमल स्टडीज के ऊपर।
1: अच्छा।
0: तो एनिमल्स के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, शोध करते हैं, और जो अच्छे जो लीड्स मिलता है उसको हम लोग आगे लेके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। वो होता है हॉस्पिटल्स में और कुछ होता है कम्युनिटी सेटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिजीज के लिए कौन सा दवाई है। और इसमें हमारे मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें बेसिक साइंटिस्ट है जो MSc PhDs है, इसमें हमारे बायो इन्फॉर्मेटिशियंस है, इसमें केमिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन के लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारा डिसिप्लिन हम लोग एकत्रित होके ये वैलिडेशन साइकिल हम लोग खत्म करते हैं।
1: अच्छा।
0: और जिसमें अच्छा जो रिजल्ट्स आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स में, इंटेंशन ये है कि वो एक्चुअल प्रैक्टिस में बदलाव आए। सो इट विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिकेसी आल्सो। ये हमारा इंस्टीट्यूट का काम है।
1: अच्छा, उसी के साथ सर ICMR का उद्देश्य क्या है मुख्य?
0: ICMR भारत का जो प्रीमियर हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो प्रमुख हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका शुरुआत हुआ था 1911 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। ICMR का जब शुरुआत हुआ था इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तो इससे जो फर्स्ट शुरू हुआ काम, वहाँ का वो टाइम का जो भी हेल्थ जो डिजीज था, जो प्रॉब्लम्स था, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर उसका सलूशन निकालना, इसी से शुरू हुआ था। फिर रिसर्च फंडिंग भी एक मेजर एक्टिविटी था, जो नॉन ICMR इंस्टीट्यूट्स को फंड्स दिया जाता है, तो ये फंडिंग बॉडी के रूप से भी काम करता था और वो अभी भी करते रहे हैं। सो अभी जो मेन ICMR का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उसके अंतर्गत आता है। ICMR का 28 इंस्टीट्यूशंस है अक्रॉस द कंट्री। कुछ है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स जो कोई एक एरिया के ऊपर या एक डिजीज के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि हमारा चेन्नई में ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम होता है NIRT में, हमारा मुंबई वाला इंस्टीट्यूट जो है जो वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, देन हमारे इंस्टीट्यूट है पुणे में जो वायरोलॉजी का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरल डिजीजेस के ऊपर काम करते हैं। वैसे हमारा इंस्टीट्यूट है जो बेलगाम में है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। ये छोड़ के और भी हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स है जो रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च NIHR। सो ये डिफरेंट लोकेशंस में स्थित है और वो जो रीजन का जो प्रॉब्लम्स हेल्थ रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, एंड देन पूरा नेशनल लेवल पे भी जो मेजर जो डिजीजेस है या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी शोध करते हैं। तो अभी हमारा जो ICMR का जो मेन फंक्शन है वो है पूरा जो कंट्री का हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम, इसके ऊपर काम करना, नए टेक्नोलॉजीज लाना, नए दवाई निकालना और पॉलिसी गवर्नमेंट को पेश करना। सो पॉलिसी विल कम ओनली आफ्टर एविडेंस। तो हम लोग रिसर्च एविडेंस में डेटा जनरेट करते हैं और उसी को ही हम लोग पॉलिसी करके गवर्नमेंट को देते हैं। सो ये हमारा ICMR का मेन फंक्शन है। ये हो गया ICMR का अपना सेटिंग में।
1: अच्छा।
0: लेकिन ICMR जैसे मैंने बताया कि इट इज़ ऑल्सो अ फंडिंग बॉडी, तो जो भी हेल्थ रिसर्च दूसरा इंस्टीट्यूट्स में होता है

0: एक एली में ले लीजिए, कि एम्स में ले लीजिए, कि सीएमसी में ले लीजिए, कि और भी कोई भी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, इसका जो अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव्स होता है रिसर्च का, इसका फंडिंग होता है। तो इसका एक मैकेनिज्म है, इसका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, उसको रिव्यू होता है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी और जो जिसका ज्यादा सोल्यूशन आने का चांसेस ज्यादा है उसको फंडिंग मिलता है। सो इसीलिए ICMR इज एक्चुअली द एंटायर हेल्थ रिसर्च ऑफ द कंट्री इज काइंड ऑफ ICMR।
1: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में ICMR की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट है?
0: जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ट्रीटमेंट पॉलिसी सब कुछ डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, और ICMR वही एविडेंस जनरेट करता है, चाहे उसका अपना इंस्टीट्यूशन से हो या फिर जो उसका कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस को फंड किया गया है, जो मेडिकल बॉडीज है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उन लोगों के ऊपर। तो ये सब इकट्ठा करके एविडेंस तैयार होता है और एविडेंस डिटरमाइंस पॉलिसी। नए ड्रग्स, नए ट्रीटमेंट रेजिम्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, अभी ये सब ICMR हेल्थ रिसर्च में इसका कंट्रीब्यूशन करता है कंट्री के लिए।
1: वर्तमान समय में सर ICMR किन प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रों पर काम कर रहा है?
0: ICMR इंडिया सेंट्रिक जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो मेजर एरियाज ट्रेडिशनली था, उसके ऊपर से अभी नए प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कैंसर का बहुत महत्व रखता है। अभी नए चीज़ें भी आ रहे हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल हेल्थ, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का भी हेल्थ इम्प्लिकेशंस आता है। तो ये सब 360 डिग्री ऑफ हेल्थ रिसर्च इज डन बाय ICMR, और फोकस उसमें ही रहता है जो नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज है, जो गवर्नमेंट डिटरमिन करते हैं कि ये हमारा प्रायोरिटीज है, तो उसके ऊपर ICMR काम करते हैं।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में क्या ऐसे बदलाव आए हैं?
0: ये जो स्वास्थ्य का जो इश्यूज है, ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। पहले बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बहुत ज़्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: जो दवाइयाँ आने के बाद या फिर दूसरा टेक्निक्स आने के बाद वो थोड़ा कम हुआ था। एनसीडीज बढ़ता गया, जैसे कि अभी हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है, या फिर डायबिटीज़ ले लीजिए, कैंसर्स ले लीजिए, ये बढ़ रहा है। अभी इन्फेक्शस डिजीज पहले जैसे उतना खतरनाक तो नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम है, जैसे कि कोविड का पेंडेमिक आपको देखने को मिला, अचानक कभी भी कुछ चीज़ आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी हम लोग जब एंटीबायोटिक लाए, एंटीबायोटिक वॉज द मेन रीज़न वाई वी हैड लेस बर्सरा, जो इम्पोर्टेंट है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अभी हम लोग जब एंटीबायोटिक लाए, एंटीबायोटिक वॉज द मेन रीजन वाई वी हैड लेस बर्डन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज इन द पास्ट, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। नॉर्मल जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है उसमें काम नहीं होता है, और हमारे पास ज़्यादा एंटीबायोटिक्स है नहीं। तो बड़े हॉस्पिटल्स में, टर्शियरी केयर सेंटर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेजिस्टेंट है सब ऑर्गेनिज्म में, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ये नए चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्फेक्शस डिजीज में काम होता है। और जो नॉन इन्फेक्शस जो है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उसमें ये हाइपरटेंशन है, माल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर्स है, जिसके ऊपर हमारा रिसर्च बढ़ाया गया है। और नया जो है वो है, जैसे बताया अभी, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें हम लोग वेटरनरी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ सब एक साथ देख रहे हैं हम लोग। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री में कि कोई फार्म एनिमल्स में यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन चेन में भी आ जाता है। तो उसको कैसे, उसको रोध किया जाए, उसके ऊपर भी काम होता है। सेकेंडली है द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। अभी बहुत कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बहुत बढ़ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आया है, तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशंस ढूंढने में, और इट बिकम्स मच इजियर टू एक्चुअली मैनेज एंड इवन डिज़ाइन न्यू इंटरवेंशंस।
1: स्वास्थ्य अनुसंधान से आम नागरिकों को क्या लाभ मिलता है?
0: एविडेंस से ही पॉलिसी और ट्रीटमेंट डिटरमाइन होता है। जब तक हम लोग रिसर्च या का अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक ये एविडेंस मिलता नहीं रहेगा, और ये भी चेंज होता रहता है। एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग। हर दिन नए नए इंफॉर्मेशन मिलता है, जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उसका अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके हिसाब से समटाइम्स ट्रीटमेंट में ऑल्सो चेंज, नॉलेज चेंजेस, तो उसका नए नए तरीके आते हैं।

0: मैंने बताया टेक्नोलॉजी, सभी टेक्नोलॉजीज आने लगे हैं। अभी जो शोध बहुत साल लगता था, अभी बहुत जल्दी ये शोध होता है। सो टाइम ऑल्सो हैज काइंड ऑफ शॉर्टेंड फॉर गेटिंग न्यू ड्रग्स, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इन टू रिसर्च।
1: मान लीजिए सर कि कोई अगर नई दवा आती है तो उस पे उपचार पद्धतियों पर किस प्रकार संशोधन या फिर शोध होता है?
0: अगर नए कोई दवाई आता है तो उसका भी एक आने का एक प्रोसीजर रहता है। सो बहुत सारे फेजेस बोलते हैं, वो उतर के फिर नए दवाई आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई जो एक बार ये सब जो फेजेस है ये उतर के आया देन वो बहुत साल रहा, वो भी कभी कभी नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: बिकॉज सेफ्टी इश्यूज भी रहते हैं उसमें। सो जो पहले स्टडीज में पता नहीं चलता है तो वो पोस्ट मार्केटिंग भी मॉनिटरिंग होता है। सो ये जो स्टेजेस मैंने बताया, फर्स्ट शुरू होता है लेबोरेटरी के काम से, वो लेबोरेटरी में मॉलिक्यूल्स लेके या फिर कोई ड्रग्स लेके इसके ऊपर हम लोग इन विट्रो स्टडीज बोलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में करते हैं। उसके बाद आता है एनिमल स्टडीज, हम लोग नॉर्मली छोटे एनिमल से चालू करते हैं।
1: अच्छा।
0: कभी कभी ज़ेब्रा फिश में करते हैं क्योंकि एथिकल रीजन, हमें सबका एथिक्स का जो स्टैंडर्ड्स है वो मान के ही हमें करना पड़ता है ताकि एनिमल लाइफ भी कम हो। तो वो लेके उसका अगर सक्सेस होता है तो वो जाता है एफिकेसी स्टडीज में, तो वो कितना इफेक्टिव है एनिमल्स में वो स्टडीज हो जाता है। वो होने के बाद फिर जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स होता है उसमें बहुत सारा फेजेस आता है। फर्स्ट होता है फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। तो ये जो फेज वन है ये बहुत कम लोगों, 10-15 लोगों में काम किया जाता है, और उसमें बेसिकली सेफ्टी देखा जाता है कि ह्यूमंस के लिए सेफ हो। एक बार सेफ हो गया देन उसके बाद बड़ा स्टडीज किया जाता है कि हाउ गुड इट इज, वेदर जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उससे बेहतर है कि ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है। तो अगर उससे बेहतर है या फिर मोर कॉस्ट इफेक्टिव है तो आगे जाता है। तो फिर देन उसके बाद बड़ा स्टडीज होता है इन लार्ज पॉपुलेशन, मोस्टली मल्टीसेंट्रिक स्टडीज होता है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें देखा जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है। देन एक बार वो हो गया देन मार्केटिंग लाइसेंस होता है, देन मार्केट में आ जाता है। और उसके बाद एक फोर्थ फेज होता है जो बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। तो ये पोस्ट मार्केटिंग, मार्केट में आने के बाद वो रियल लाइफ कंडीशन में देखा जाता है कि लोगों का ऊपर कैसे असर कर रहा है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें भी थोड़ा सा सेफ्टी का भी पार्ट रहता है कि हो सकता है कि बहुत सारा लोगों में से एक लोगों का कुछ एडवर्स इवेंट हो, तो लेकिन वो भी जानना जरूरी है ताकि हम लोग केयरफुल रहे कि अगर एक लेके थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, कभी कभी रैशेस निकलता है कि
1: करेक्ट,
0: तो उसमें केयरफुल होना जरूरी है। तो ये होता है। ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड ऐसे ड्रग्स है जो पोस्ट मार्केटिंग के बाद भी विदड्रॉ किया गया बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज। तो इसलिए ड्रग्स हमेशा सुपरवाइज्ड रहता है।
1: ओके। आज भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ कौन सी है सर?
0: मैं इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट जो क्लासिकल है कम्युनिकेबल डिजीज का, इन्फेक्शस डिजीज का, जो हम लोगों को कोविड ने दिखाया। अभी इबोला का एक आउटब्रेक चल रहा है जो WHO ने भी डिक्लेयर किया है। तो ऐसे कोई भी वायरस हो, बैक्टीरियल स्ट्रेन हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से फैल सके। बिकॉज हम लोग आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं, एक जगह में होता है तो दूसरा जगह में बहुत आसानी से आ जाता है, चाहे थ्रू शिप्स इम्पोर्ट्स हो, गुड्स हो, या फिर ह्यूमन से हो कि एनिमल से हो, आ जाता है। सो ये चैलेंज तो हमेशा हमारे पास रहेगा। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका अगेंस्ट में ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। तो क्योंकि हमें आइदर उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स चाहिए, नहीं तो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स चाहिए।
1: Correct.
0: तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इन्फेक्शस डिजीज का। दूसरा है राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमारा लाइफ स्टाइल की वजह से, कि हमारा फूड के वजह से, अभी हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो, मेंटल हेल्थ हो, ये सब हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसको, इसका समाधान ढूंढना उतना आसान नहीं है क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल है। जो इन्फेक्शस डिजीज में है हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से होता है, अगर उसको रोक सके तो उसको कंट्रोल में आ जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ज्यादातर केसेस में ये मल्टी फैक्टोरियल होता है। तो इसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना मेजर थ्रस्ट एरिया होता है। तो ये एक इशू है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो आ रहा है आजकल का रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इश्यूज है, एनवायरमेंटल हेल्थ पॉल्यूशन, इसके वजह से नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर पुराना प्रॉब्लम्स को और भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। स्क्रीन टाइम, हमारा डिवाइसेस, सो ये सब नए चीजें हैं जिसका इफेक्ट नॉट ओनली ऑन आवर फिजिकल हेल्थ बट ऑन मेंटल हेल्थ भी होता है. सो दीज आर न्यू चैलेंजेस दैट हैव.
1: तो इन पे अगर हमें कंट्रोल पाना है तो हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या सलाह देंगे हम लोगों को?
0: अगर हम लोग ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बात करें तो परहैप्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेस्ट वे फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेस्ट. हम लोग तो हमेशा बचपन से सुनते रहे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो ये जो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारा लाइफस्टाइल, मोबिलिटी बढ़ाना है, एक्सरसाइजेस करना है, जो डाइट हम लोग ले रहे हैं. अभी बच्चे तो फास्ट फूड के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं. हेल्दी फूड जो है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड्स जो है, चाहे कोई भी रीजन का हो, हफ्ते में कितना दिन वो एक्चुअल ट्रेडिशनल फूड्स लेते हैं, बहुत कम लेते हैं. लेकिन इसके वजह से क्या है कि जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है उनको मिलता नहीं है. इवन सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो भी वो जितना हम लोग नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है और जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है उतना होता नहीं है. तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है. स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है. आजकल बहुत लोग स्लीप डिप्राइव्ड है. बच्चे अगर बहुत पढ़ाकू है तो रात को जाग के पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली इफेक्ट होता है अपने सेहत के ऊपर. तो वो भी ध्यान देखना चाहिए. सेहत है तो भी पढ़ाई होगा.
1: बिल्कुल.
0: देन आता है एडिक्शन. ये एक मेजर इशू है. तो एडिक्शन बहुत तरीके होता है. इसको मैं स्क्रीन एडिक्शन भी मैं इसी में ही डालूंगा, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन ही है. बहुत ज़्यादा मोबाइल फोन चलाना, देखना, कंप्यूटर्स के सामने. इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग ज़्यादातर आजकल जो वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स है, कंप्यूटर्स के बिना तो चल नहीं सकते, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो उसका भी इफेक्ट होता है. सो ये सब कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और फाइनली स्ट्रेस. अभी शायद हर कोई स्ट्रेस में रहता है. You cannot find anybody who is not under stress. लेकिन stress management बहुत important है. तो इसीलिए we have to learn to cope up with stress and manage them well.
1: Okay. उसी के साथ सर, आजकल हम देख रहे हैं कि diabetes हो या फिर hypertension हो और heart attack भी, ये सारी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही है, तो उसका क्या reason होगा?
0: मैं जैसे कहा है कि ये main reason है हमारा lifestyle, और ये multifactorial है. कोई भी एक फैक्टर से इसका हम लोग समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे. तो हमें पूरा होलिस्टिकली उसको देखना पड़ेगा. लाइफस्टाइल हम लोग जितना मॉडिफाई कर सकते हैं उसको करना है. जो कंप्यूटर में, जो डेटा सेंटर में काम करते हैं, उसको तो नहीं बोल सकते हैं कि आप कंप्यूटर के सामने मत रहो. उनको तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उनका अपना सेहत का भी ख्याल रखना है. कुछ देर अगर वर्किंग पॉपुलेशन में है, फिट है, तो कुछ देर एक्सरसाइज करें. फूड, उसमें तो हर किसी का ध्यान होना चाहिए. वो चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर स्टूडेंट हो कि रिटायर्ड पर्सन हो, हेल्दी फूड इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. तो उनका जो डाइट के हिसाब से जो अच्छा सूट करता है, लेकिन विद ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज, वो लेना बहुत जरूरी है. अवॉइड एडिक्शंस, चाहे वो टोबैको का हो कि लिकर का हो कि इवन स्क्रीन का हो, ये अवॉइड करना चाहिए. स्लीप बहुत जरूरी है. दे शुड इंश्योर दैट दे हैव प्रॉपर साउंड स्लीप इन वट एवर टाइम पॉसिबल फॉर दम. थोड़ा सा अनुशीलन लाना चाहिए अपने, डिसिप्लिन लाना चाहिए अपने लाइफ में. तो ये इम्पोर्टेंट है.
1: बिल्कुल. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में. आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनेक्शन.

0: KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health-related problems. Experienced doctors and ultra-modern facilities ke saath. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center. Nehru Nagar, Belagavi. Call 08312473777.
1: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है. आपने ट्यून किया है केले वेणुधोनी 90.4 FM और एक विशेष प्रोग्राम हमारा शुरू है जिसमें हम सुन रहे हैं डॉक्टर सुबर्णा रॉय जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट है. सर, बहुत से बातें हमने अब तक डिस्कस की. तो जैसे ब्रेक से पहले हमने डिस्कशन किया कि ये जो मधुमेह है या फिर उच्च रक्तदाब है उसको कैसे हम कंट्रोल करें या फिर क्यों बढ़ रहे ये सारी बीमारियां. तो अभी जो मेंटल स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर?
2: मेरे जानकारी के हिसाब से आज के दिन में 7 में से 1% कोई ना कोई मानसिक समस्या के शिकार है. सो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग विद मेंटल, आई विल नॉट से डिसऑर्डर्स बट एटलीस्ट विद सम प्रॉब्लम. इंडिया का सुइसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है. इसीलिए ये जो मेंटल हेल्थ वाला जो इशू है ये ट्रेडिशनली थोड़ा निगलेक्ट किया गया. हम लोग भी सोचते हैं कि ये, हम लोग बोलते हैं पागल है. पागल नहीं है, हम लोग सब स्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होता है. जैसे फिजिकल हेल्थ भी होता है, कभी कभी हम लोग बीमार रहते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता बॉडीली, वैसे मेंटल उनका भी सेम ही इशू है. इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये स्ट्रेस का इशू है. स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए हमेशा कोई भी काम के साथ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी की ज़रूरत है. अगर कोई म्यूजिक में, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो म्यूजिक करे, किसी को पेंटिंग करना आता है पेंट करे, कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ बातें करे. तो ऐसे टाइप का आप अपना जो अच्छे चीज जो लगे उसमें थोड़ा मेंटली डाइवर्शन बहुत जरूरी है. जब जरूरत पड़े दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर एज वेल, क्योंकि दे विल बी एबल टू हेल्प देम आइदर थ्रू काउंसलिंग और इफ रिक्वायर्ड थ्रू ड्रग्स. मोस्टली काउंसलिंग से ही बहुत चीजें सुलझा जा सकता है. सो ये बहुत जरूरी है. अभी जो हम लोग विकसित काल जो बोल रहे हैं, अमृत काल में जो विकसित भारत का गोल्स है उसके हिसाब से हम लोग मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारा स्ट्रेस दिया गया है. बिकॉज ये अमृत काल के बाद हमारे लोगों का जो एवरेज एज है, हम लोग बुढ़ापे के और जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा. और एज में मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिमेंशिया आता है, भूलने का आदत, सो ये आजकल बहुत जल्दी आने लगा है. थोड़ा और जाने के बाद वो अल्जाइमर्स टाइप का भी हो जाता है, तो कम्प्लीटली भूलने का जो आदत है वो हो जाता है. सो इसीलिए बट दिस आर मोस्टली प्रिवेंटेबल. इसका अगर हम लोग शुरू से ही हम लोग उसके लिए तैयार होते हैं कि हम लोगों को एक्टिव रहना है. एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिमेंशिया के लिए बताते हैं लोगों, आपको कैलकुलेट करना या फिर थोड़ा पढ़ाई करना, तो क्या है अपना ब्रेन को यूज करना वो बहुत जरूरी है. इवन आफ्टर रिटायरमेंट पीपल शुड बी एक्चुअली इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इसमें एविडेंस है कि आप जितने ज्यादा ये पढ़ाई लिखा किया हो कि या फिर आप करते हो तो उसमें आपका वो जो डिमेंशिया का ऑनसेट एज है वो डिले हो जाता है. एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप योगा करते हो कि कोई एक्सरसाइज करते हो वो भी डिमेंशिया को डिले करता है एंड इट हेल्प्स इन बस्टिंग स्ट्रेस ऑल्सो. तो इसीलिए दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ बींग प्रमोटेड प्रोमोटिव हेल्थ में. सो हमें बीमार होना ही नहीं है. सो द बेस्ट वे इज टू प्रिवेंट. और जो पहले का हमारा आउटलुक था कि हम लोग हमेशा डिजीज बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढते थे, अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन विच वी डू नॉट बिकम डिजीज्ड, वी रिमेन फिट एंड हेल्दी. सो यही मंत्र है अभी.
1: बिल्कुल सर, युवाओं में ये जो बढ़ता तान तनाव है या फिर स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा पाई जाती है उसके बारे में क्या सलाह रहेगी?
2: ये जो मैंने बताया कि अमृत काल का हमारा जो टाइमलाइन है इसका वन ऑफ द रीजन इज दैट हमारा जो एज है, एवरेज एज है, वो बहुत यंग है, बहुत प्रोडक्टिव है. और इसी प्रोडक्टिव एज को सब मिलके अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही भारत का विकसित प्लान के हिसाब से जाएगा. तो इसीलिए जो ये जो युवाएं हैं ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है हमारे पॉपुलेशन में, बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप. और दैट इज द रीजन व्हाई देयर हेल्थ बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव टू बी फिट एंड दे हैव टू बी एबल टू एक्चुअली वर्क एंड मेक टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल. तो इसीलिए दे मस्ट फॉलो दिस फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ थ्रू प्रॉपर डाइट, थ्रू प्रॉपर स्लीप, थ्रू बस्टिंग स्ट्रेस, तनाव कम करने के लिए, बाई हैविंग गुड हैबिट्स, ब्रिंगिंग इन डिसिप्लिन इन देयर लाइफ, अवॉइडिंग सब्सटेंसेस फॉर अब्यूज एंड लीडिंग अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल.
1: सर आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारे रील्स रहे या फिर कई सारे मैसेजेस रहे, वो देख के कई सारे अफवाह रहती है, वो देख के लोग उसको फॉलो कर देते हैं और उससे उनके हेल्थ पे मतलब साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, तो इनसे हम कैसे बचें?
2: जो रील्स में आता है उसमें से ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो गलत होता है और उसका कोई बेस नहीं होता है.
1: अच्छा.
2: सो पीपल शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली व्हाट एवर आर टोल्ड इन सोशल मीडिया एंड इन रील्स. दे शुड ओनली फॉलो दोज विच कम फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स. जो गवर्नमेंट का सोर्स रहता है कि एक्चुअल रिसर्च बॉडी जैसे ICMR का सोर्स है, इसी को ही माने. बाकी जो है दे शुड टेक ऑलवेज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो किस से सुन रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: करेक्ट.
2: क्योंकि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पब्लिसिटी के लिए
1: बिल्कुल
2: कुछ भी बोल देते हैं. हाँ, हो सकता है उन लोगों का रील्स ज्यादा शेयर हो, उनको वो स्टार बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोल रहे हैं वो सही है.
1: करेक्ट. तो वो थोड़ा सा हमें स्टडी करके उस पे भरोसा करना चाहिए.
2: एग्जैक्टली. इसीलिए बेस्ट वे इज दैट जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स है, कि जो ऑथेंटिकेट सोर्स है, जो गवर्नमेंट का सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सोर्स है, ऐसे सोर्सों को बिलीव करें. और जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस है, अगर KLE का ऑफिशियल हैंडल से कुछ निकलता है सो पीपल शुड बिलीव दैट. जो दूसरा इंस्टीट्यूट का, जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट का, उसका ऑफिशियल हैंडल से कोई आता कुछ निकलता है तो उसको दे कैन बिलीव. लेकिन नॉट जस्ट एनीबडी सेइंग समथिंग और उसको बिलीव करके और उसका फॉलो करना वो सही नहीं है.
1: बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है?
2: महिलाओं में पर्टिकुलरली जो गर्भवती है, इन लोगों का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनका ही नहीं, उनका जो फीटस है, जो बच्चे पैदा होगा, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए. वैक्सीनेशन जो है वो लेना जरूरी है. जो IFA टैबलेट्स वगैरह जो आयरन के लिए जो दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है, इसको कॉम्प्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो क्या है, बाद में उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है. जहाँ तक बच्चे का सवाल है, इन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वैक्सीनेशन स्टिक से लें, जो भी वैक्सीन का रेजिमेंट है. हाइजीन उनको लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उनका इन्फेक्शन कुछ ना लगे, वो इंपॉर्टेंट है. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ ऑफ एज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना है. एंड न्यूट्रिशन के लिए भी बोथ मदर एंड चाइल्ड का न्यूट्रिशन हमेशा एकदम अच्छा रहना चाहिए. पोषण ठीक से होना जरूरी है. इवन अदरवाइज जो एडोलेसेंट गर्ल्स है तो इनका भी अपना सेहत के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलरली विद देयर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल.
1: इसी के साथ सर, क्या नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है?
2: डेफिनेटली. सबको जो 30 इयर्स के ऊपर है उनको तो नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है. हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोगों को देखते हैं कि दे आर फिट, लेकिन कभी उनका BP लेने जाएंगे तो देखेंगे कि ब्लड प्रेशर है. सो क्या है, समटाइम्स पीपल डू नॉट नो दैट दे हैव हाई BP.
1: करेक्ट.
2: बिकॉज दे हैव नॉट चेक्ड. तो ये बहुत जरूरी है. सिमिलर थिंग विद ब्लड शुगर ऑल्सो, कि प्री डायबिटिक स्टेज में बहुत सारा लोग पाए जाते हैं जिनको पहले पता ही नहीं था कि वो प्री डायबिटिक है. इवन डायबिटिक जो है उनको भी कभी कभी पता नहीं होता है कि वो डायबिटिक है.
1: बिल्कुल.
2: तो इसलिए ये जितना जल्दी इसको हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो ठीक हो सकता है. लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गया डिटेक्ट करने में तो देन मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ता है. लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत रिगरस होता है, वो डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए जितना जल्दी टेस्ट करेंगे, जितना जल्दी उसको डिटेक्ट करेंगे, यू कैन एक्चुअली मैनेज दैट और इवन रिवर्ट बैक फ्यू लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस.
1: ओके. सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है?
2: आज के दिन में AI और टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग हेल्थ और इंक्लूडिंग हेल्थ रिसर्च. मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. ये जो डिजिटल और जो डिजिटल हेल्थ का है, ये जो भी आजकल का स्कीम्स जो लॉन्च हो रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो कि वैक्सीनेशंस का हो, सब आपके साथ आधार के साथ लिंक रहता है. एक ही जगह में आपको इमीडिएटली डेटा मिल जाएगा कि किसने क्या वैक्सीनेशन लिया है, के कब लिया है, उसका कुछ डोज बाकी है कि नहीं। हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, ये मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग पहली बार बहुत सारा केसेस ऑफ डिप्थीरिया डिटेक्ट किया बीजापुर और बागलकोट एरिया में। अब हम लोग जब उनका वैक्सीनेशन हिस्ट्री लेने गए, उन लोगों को दे आर अनेबल टू टेल कि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था कि नहीं लिया था, कब लिया था, कितना डोज लिया था, बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं था। कार्ड दिया जाता था, लेकिन कार्ड में कितना एंट्रीज है डिजिटली कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, कार्ड खो गया तो खो गया, सो ऐसे होता है। लेकिन दीज आर ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, लोगों को मरना नहीं चाहिए इसमें। लेकिन एक बार ये सब डिजिटाइज हो गया, देन यू कैन एक्चुअली गेट बैक योर डेटा वेरी इजीली। तो आपका चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का हो, आपका ट्रीटमेंट का प्रोफाइल हो, सब कुछ ये टेक्नोलॉजी हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डिजाइनिंग न्यू थेरेपीज, इन डिटेक्शन। आपका इतना सारा अभी गैजेट्स आ रहा है, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक गैजेट डेवलपमेंट

0: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर, इतना बड़ा बदलाव फिर देख पाएंगे हम अगर वो यूज में आ गया तो।
1: ये आ जाएगा कुछ सालों में ही ये सब आ जाएगा।
0: अच्छा, डिजिटल हेल्थ सेवाएं भविष्य में किस प्रकार मदद करेंगी सर?
1: मैंने जैसे बताया कि डिजिटल हेल्थ होने से क्या है, एवरीथिंग बिकम्स योर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, सब रिकॉर्ड्स में रहता है।
0: करेक्ट।
1: मैंने जैसे बताया कि डेटा ही ड्राइव करता है हमारा पॉलिसी, हमारा एविडेंस, ये सब एक साथ आप चुटकियों में आप डेटा निकाल पाएंगे और क्या जरूरत है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोई एक पर्सन का भी अगर मेरा पूरा हेल्थ डेटा एक जगह में रहा, कोई भी डॉक्टर मुझको मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट दवाई हो सकता है या फिर कुछ रेमेडी हो सकते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम करते हैं, ये आजकल ऐप आ गया है, ये आयुर्वेद का आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो वाता पिता कपा है का वो जज करने के लिए ऐप्स आ गया है, तो ये बिकम्स मच इजियर और आप उसमें डालेंगे और उसके हिसाब से आपका जो डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करेंगे वो आसानी हो जाता है। सो ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया, ऐसे बहुत सारा चीज है जिसमें डिजिटल हेल्थ इज एक्चुअली हेल्पिंग। देन इंश्योरेंस सेक्टर में तो है ही, तो बहुत सारा जो स्कीम्स आ रहा है जो पर्टिकुलरली फॉर द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एक्चुअली यूजिंग दिस हेल्थ टेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर।
0: ICMR की भविष्य की योजनाएं क्या है?
1: अभी क्लासिकली हम लोग इंडियंस हर चीज में प्रॉब्लम्स ढूंढने में बहुत माहिर है, लेकिन सॉल्यूशंस देना बहुत डिफिकल्ट होता रहा है। सो अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है, इतना बड़ी देश है, इतने लोग हैं, अभी फोकस आ रहा है सॉल्यूशंस ढूंढने में। सो दैट इज वन मेजर फोकस मैं बोल सकता हूँ इन जनरल, कि हम लोगों का एक एक प्रॉब्लम्स को लिया जा रहा है एंड इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढा जा रहा है। एंड दिस सॉल्यूशंस आर नॉट ओनली रिलेटेड टू पीपल हु आर इन टू हेल्थ रिसर्च, ये इंजीनियरिंग सेक्टर भी कर रहे हैं, IITs में भी इसमें सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज भी इसका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज वन मेजर चेंज दैट हैज हैपेंड। सेकंड मेजर चेंज इज द एरियाज, मैंने बताया अभी जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है इसके वजह से जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे हमारा स्क्रीन टाइम का क्यों ना हो, ये जो डिजिटल, ये जो हमारा लाइफस्टाइल में हम लोग जो हमारे वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसका क्यों ना हो, या फिर इवन इन्फेक्शस डिजीज में ये महामारी टाइप का अगर कोई पैंडमिक आ गया तो उसका प्रिपेयरनेस क्यों ना हो, तो ये सब के लिए हमारा कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बनाया जा रहा है। मैं कोविड का एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, दैट वॉज अ आई ओपनर। हम लोग तो बहुत जल्दी फर्स्ट इन द वर्ल्ड काइंड ऑफ वैक्सीन बना दिया इतना जल्दी में। अभी हमारे पास BSL-4 का जो एक लैब था, अभी दुनिया का, अभी इंडिया का बहुत सारा जगह में BSL-4 लैब्स बन रहा है, ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो जाए हर जगह में, दे बिकम कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग कोई भी कितना भी डेंजरस वायरस क्यों ना हो, उसको डिटेक्ट करके उसका सोल्यूशन निकालने में सक्षम है। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहे हैं इनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि दे आर एबल टू केटर टू द नीड व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराइज। तो बोथ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ये सब चेंजेस दिखने को आ रहा है।
0: अच्छा, स्वास्थ्य अनुसंधान में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या अवसर है सर?
1: मैं तो कहूँगा ये एक बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है, करियर इन हेल्थ रिसर्च एंड इन हेल्थ टेक्नोलॉजीज। जैसे कि ICMR के हर इंस्टीट्यूट में वेरियस प्रोग्राम्स रहते हैं फॉर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम रहते हैं जो बच्चे बैचलर्स के बाद या फिर प्रेफरेबली मास्टर्स के बाद इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं, वो आके अपने हिसाब से दे कैन डू द इंटर्नशिप, चाहे 2 महीना का हो, 6 महीना का हो, 1 साल का हो। सो उसमें उन लोगों को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है रिसर्च में। उसके ऊपर आता है PhD प्रोग्राम, ICMR का बहुत स्ट्रांग PhD प्रोग्राम है, ये हमारा ACSIR के साथ टाई अप है। ICMR फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च में आता है अंडर द ACSIR फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्रीज, इसमें फेलोशिप भी बहुत अच्छा मिलता है और उसके साथ साथ उनका PhD करने का अवसर मिलता है। दे कैन चूज एनी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द ICMR नेटवर्क इन द कंट्री, ये दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके तरह ही मेरिट लिस्ट बनता है।
0: okay.
1: और जो टॉप रहते हैं मेरिट में तो दे कैन चूज देयर इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट एंड दे कैन गो देयर एंड डू द PhD। PhD होने के बाद पीपल कैन कम एज पोस्ट डॉक्टरल फेलोज, बहुत सारा फेलोशिप्स वगैरह मिलता है वेरियस ICMR इंस्टीट्यूशन में। और अगर दे वांट टू बिकम परमानेंट फैकल्टी, हम लोगों का जो साइंटिस्ट है, हम लोगों का

0: हेल्थ रिसर्च साइंटिस्ट कैडर में हम लोग आते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट होता है, तो दे कैन अप्लाई व्हेनेवर दिस वैकेंसीज आर डिक्लेयर्ड. सो इट कम्स इन द ICMR एंड द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट्स, इट कम्स इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार समाचार में आता है, उसमें वो देख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो डायरेक्ट ICMR का हो गया, ये छोड़ के जो हेल्थ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस अदर देन ICMR ऑल्सो, बहुत सारा ICMR का प्रोजेक्ट चलता है बहुत सारा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में. मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स होता है जो DHR के अंडर आता है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट्स है जो मेडिकल कॉलेज में के अंदर है, वहाँ पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है जो ICMR और DHR फंडेड है. इसका सिवाय इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल रिसर्च का बहुत महत्व दिया जाता है, तो उसमें रिसर्च सेल्स, रिसर्च यूनिट्स बनाया जाता है जिसमें स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च अपॉइंटमेंट्स किया जाता है एट वेरियस लेवल्स, उसमें भी आ सकते हैं.
1: यानी कि काफी अपॉर्चुनिटीज है,
0: काफी है और ये बढ़ रहा है.
1: युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो कहूँगा रिसर्च एक ऐसा चीज है वेयर यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स, यू कैन ड्रीम एंड यू कैन फॉलो द ड्रीम. तो आप अपना हिसाब से आपका सपना देखो और वो जो सपना है उसको साकार करने के लिए आप रिसर्च को ले लो. और ये एक हमारा एक ही प्रोफेशन है जिसमें आप बताते हो कि आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स मेन मैंडेट में होना है, लेकिन आप बताते हो कि आप क्या करोगे, उसके लिए आपको फंड्स मिलता है, चाहे सरकार से हो कि कोई अदर फंडिंग एजेंसी में. तो आपको आपका काम, आपका सोच को साकार करने के लिए पैसा दिया जाता है, आपको सैलरी दिया जाता है, और उसका जब रिजल्ट निकलता है वो भी आपके नाम से पब्लिश करते हैं.
1: करेक्ट.
0: और नॉट ओनली दैट, इफ योर पब्लिकेशन एंड इनोवेशन इज गुड इनफ, आपका जीवन के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाएगा और जो सब्सिक्वेंट लोग कि आपका नाम कोट करेगा, आपका पेपर का हो कि इनोवेशन का, ये मौका किसको मिलता है.
1: बिल्कुल.
0: तो ये भी देश का ही सेवा है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमेशा रिसर्च को एक करियर बनाओ, और इसमें हर चीज, हर दिन एक नया चैलेंज होता है, तो मोनोटोनी नहीं आता है और आप अपना ड्रीम को परसू कर सकते हो.
1: बिल्कुल. आखिर में सर, हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या विशेष संदेश रहेगा?
0: मैं कहूँगा कि जो ये हेल्थ रिसर्च और हेल्थ का जो इकोसिस्टम है, ये एक बहुत ही बड़ा रूप में उभर के आने वाला है अगले कुछ सालों में. ये एक अपने हिसाब से एक उद्योग, एक इंडस्ट्री करके बन रहा है. इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, नॉट ओनली फॉर अस सीकिंग हेल्थ और सीकिंग वेलनेस, इट इज ऑल्सो फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन टेक्नोलॉजीज, इन डिवाइसेस, इन सर्विसेज. तो इसीलिए बहुत सारा जो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस है उसका भी बहुत सारा मौका है. इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरीली दैट एवरीबडी कैन हैज टू कम इनटू द रिसर्च इटसेल्फ, बट दे कैन कम इनटू वेरियस वेज इनटू द हेल्थ सेक्टर. देयर आर प्लान्स, बहुत बड़े प्लान्स है, जो हील इन इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इसको सब इकट्ठा देखेंगे तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज आता है ये हेल्थ सेक्टर का. और इसमें वी इनवाइट एवरीबॉडी टू कम टुगेदर, बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड लेट अस टुगेदर मेक इंडिया वेरी बिग एंड वेरी हेल्दी कंट्री अंडर द विकसित भारत 2047.
1: थैंक यू सो मच सर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए
0: धन्यवाद. थैंक यू.
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप के लिए वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे. डॉक्टर सुबर्णा रॉय हमारे साथ थे, जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट हैं. कैसा था आज का एपिसोड मुझे जरूर बताएगा. नंबर है 9019904904. मनीषा फिर हाजिर होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसू. नमस्कार.

0: केली सोसाइटीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्योर फॉर ऑल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस डॉक्टर्स एंड अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ केली सोसाइटीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर नेहरू नगर बेलागावी कॉल 08312473777
1: नमस्कार आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो है फोन एडिक्शन के बारे में। आज हम जान लेंगे क्या होता है ये और किस तेजी से ये बढ़ रहा है, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, इन सभी के बारे में आज के शो में चर्चा होगी। और इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस निमहांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। उसी के साथ निमहांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा सर स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। डॉक्टर आनंद असिस्मेंट साइकोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन डिवीजन के फैकल्टी इंचार्ज भी है जो भारत के लिए स्वदेशी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास और मानकीकरण पर कार्य करता है। सर वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सर कि फोन एडिक्शन कैसे होता है, उसके बारे में सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये फोन या फिर मोबाइल एडिक्शन होता क्या है।
2: तो मैम, मोबाइल फोन एडिक्शन ये ऐसी एक बिहेवियर एडिक्शन है जिसके लिए सभी लोग रिस्क पे हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन रिस्क पे है तो जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो सभी रिस्क पे हैं। और रिस्क पे क्यों हैं? क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि उसमें गेमिंग एप्लीकेशन है, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हैं, वेब सीरीज एप्लीकेशन हैं। तो जो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं ये बनाए इसलिए जाते हैं कि ये हमको हम इनको बार बार यूज़ करें। वो बनाए इसी तरीके से जाता है कि उसमें हमें बहुत रीइन्फोर्समेंट मिलता है, बहुत रिवॉर्ड मिलता है, खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, सरप्राइज मिलता है, हमारा जो मूड है वो एकदम तुरंत ही बदल जाता है उसे देखने से। उसे हमें एकदम आनंद मिलता है जो कि बाकी चीज़ों में हमें उतनी जल्दी आनंद नहीं मिलता। अगर हम कोई और कार्य करेंगे, घर पे कोई और कार्य कर रहे हैं, अगर कोई एडोलेसेंट हैं, कोई नवयुवक हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं या अपने किसी सहपाठी के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं तो उनको तुरंत इतना खुशी का आभास नहीं होगा। लेकिन जब भी वो कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या उसे कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो तुरंत ही हर आधे मिनट में उनको एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो डिजाइन ही इसी तरह के किए गए हैं कि उनको एकदम खुशी तुरंत ही मिल जाए। और जितनी बार उनको खुशी मिलती है उतनी बार ये उनका दृढ़ संकल्प हो जाता है धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में कि इसको यूज करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, इसे हमें यूज करने से आनंद मिलता है। अच्छा। तो एक हो गया कि जो मोबाइल फोन है, जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं वो अडिक्ट होने के लिए ही बनाए गए हैं कंपनीज द्वारा।
1: बाप रे।
2: क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उस पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।
1: करेक्ट।
2: और उसमें कई दूसरे तरह से जो हमारे अंदर खुद के अंदर कई सारे वल्नरेबिलिटी रहती है और इसको हमें तब पता लगता है जब हम देखते हैं कि हम उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि एक बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन होना। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ही मोबाइल फोन एप्लीकेशन को या स्मार्टफोन को आप काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं और आपको अपने समय कितना बीत चुका है उसका अंदाजा चला जाता है।
1: एग्जैक्टली।
2: उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। कोई भी और काम कर रहे हैं लेकिन सबसे जैसे एकदम तुरंत फ्री होते हैं तो फिर आपका हाथ वही मोबाइल फोन में जाएगा, उसे आप ओपन करेंगे। तो ये एक पहला लक्षण होता है प्रीऑक्यूपेशन। दूसरा लक्षण होता है, इसे बोलते हैं विड्रॉल।
1: अच्छा।
2: विड्रॉल ऐसा होता है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से दूर हैं तब आपको चिड़चिड़ापन लगता है, तब आपको थोड़ी बेचैनी लगती है, तब आपको थोड़ी घबराहट होती है या तब आपको गुस्सा आ जाता है। चाहे तो आप ये फोन आपके पास ना हो, हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, फोन का इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो गया हो या किसी ने फोन आपसे घर में ले लिया हो, तो अगर ये हो रहा है तो इसका दूसरा लक्षण है, इसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम।
1: अच्छा।
2: और आपने देखा होगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें कि बच्चों से जब माँ बाप ने मोबाइल ले लिया, बच्चों में तुरंत एक तीव्रता से एक गुस्सा बेचैनी आ गई, जिससे कि माँ बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कि देखा गया है कि बच्चों ने कुछ ऐसे एक्शन ले लिए जो कि बहुत घातक रहे हैं उनके लिए, उन्होंने कुछ फिजिकल वायलेंस कर दिया गया है। तो ये होता है विड्रॉल। तीसरा होता है टॉलरेंस। ये तीसरा लक्षण, टॉलरेंस का मतलब होता है पहले ही सिर्फ 5 मिनट यूज करने में, 10 मिनट यूज करने में ही आनंद मिल जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका समय जो है बढ़ता जा रहा है। पहले वो जो चीज़ 10 मिनट में खुशी देती थी वो 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, वो 1 घंटा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे पहले खुशी का आभास आपको थोड़ी देर यूज करने में मिल जाया करता था, लेकिन अब उसको ज्यादा देर तक यूज करना पड़ता है तब आपको संतुष्टि मिलती है। और धीरे धीरे इसी तरह टाइम जो होता है पहले आधे घंटा भी नहीं, 10-15 मिनट से शुरू होता है धीरे धीरे कोई भी एप्लीकेशन, वो धीरे धीरे अब 1-2 घंटा 3 घंटा तक जा रहा है। Correct. एक बार जब स्टार्ट करते हैं तो रुक नहीं पाते हैं। तो तीसरा लक्षण इसको बोलते हैं टॉलरेंस। चौथा लक्षण होता है कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो सब बोलते हैं बस 1 मिनट एक मिनट के बाद, बस अभी ये काम 1 मिनट के बाद करता हूं मैं। तो एक बार जब स्टार्ट किया उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाना उसे, उसको बोलते हैं डिफिकल्टी टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। तो ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में आप जो है आपकी इम्पैक्ट हो पा रहा है, मतलब उन पे असर पड़ रहा है, जैसे कि आप अपना जो स्कूल का काम है वो टाइम पे नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ऑफिस का काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो पा रहा है, परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। इसकी वजह से आपके घर में आपके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, दोनों जो घर में जो भाई बहन है और जो अलग और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं इसकी वजह से। आप इसकी वजह से कई बार पैसे भी चुरा लेते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उसमें से कुछ देखा आपने, वो चीज़ पसंद आ गई, अब उसे ख़रीदना है तो उसमें, तो ये बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। ये होने के बावजूद भी फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, और कई बार अगर आप रात को खाने के बाद इसे यूज़ करते हैं तो 3-4 घंटे रात को हो जाता है, 1 बज गया तब सो रहे हैं, तो स्लीप भी इससे डिले हो जाती है। तो ये पांचवा। छठा होता है कि आपके जो सोशल रिलेशनशिप हैं उसमें आपकी रुचि जो है कम हो जाती है, अब आपका मन नहीं करता लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जैसे मैंने पहला बताया लोगों से बातचीत करें, क्या कोई फंक्शन है घर में वह जाएं, या किसी ने आपको कम्युनिटी में फंक्शन में बुलाया हुआ है अपने कॉलोनी में, वहाँ जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो अब रुचि लायक नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुचि, क्योंकि इतना ज़्यादा आनंद वो तो देंगे नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया वो एप्लीकेशन जो हैं वो ज़्यादा खुशी देते हैं आपको, तो उसमें टाइम बिताना। सातवां होता है कि जब भी आपका मूड जो है जब ख़राब हो जाए, जब चिड़चिड़ापन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, या किसी से कुछ मनमुटाव हो जाए, तो उसी टाइम तुरंत आप मोबाइल फ़ोन का एक्सेस करते हैं, और उस टाइम पे फिर उसको देखने के बाद आपका मूड ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं कि मूड मॉडिफिकेशन, आपका मूड जो है में परिवर्तन आ गया।
1: अच्छा।
2: और अपने आप मोबाइल फ़ोन को अपना मूड ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और आखिरी है जो आठवां लक्षण है कि जब आप कितना, अगर कोई पूछे आप कितना टाइम बिताते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे, तो आप हमेशा कम ही बताते हैं, क्योंकि आपको पता ही कितना टाइम बिता रहे हैं आप। तो ये 8 लक्षण हैं। इन 8 लक्षण में से अगर कोई भी 5 लक्षण अगर आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, और किसी को भी जिनको आप जानते हैं अगर हैं, तो उनको डिजिटल एडिक्शन लगभग तय है।
1: अच्छा, मुझे लगता है जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी उनमें से कुछ गिने चुने लोग होंगे जो भी एज लिमिट की वजह से शायद होंगे, मतलब एज फैक्टर की वजह से, जिनको ये लत नहीं है, या फिर जो ज़्यादा समय अपना मोबाइल पे नहीं बिताते हैं। नहीं तो 90% लोग अभी मोबाइल से अडिक्ट हो चुके हैं और वो बहुत बड़ी लत लग चुकी है अभी लोगों को। तो मेरे ख्याल से सर अभी ये जो सभी आपने लक्षण बताए, या फिर जो एप्लीकेशंस है जो इतने अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हैं कि लोगों को उस आदत लगे, उसकी वजह से ही ये जो लत है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो सर क्या मोबाइल एडिक्शन को एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी माना जा सकता है?
2: हाँ, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जिसमें इसमें निमहांस ने, सर्विस फॉर हेल्दी यूज़र टेक्नोलॉजी क्लिनिक निमहांस जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हमने काफ़ी रिसर्च करी है इसके बारे में, और इसमें पाया गया है कि ये बहुत सारे युवकों में, एडोलेसेंट्स में, और जो यंग अडल्ट हैं उनमें ये पाया जा रहा है, और हमने यहाँ पे भी और बाकी जितनी भी दुनिया में रिसर्च की जा रही है उसमें पाया गया है कि ये एक मानसिक समस्या बन गई है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको इसको बताऊं तो हमने कुछ रिसर्च करी जिसमें कि कर्नाटका में ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की, उसमें पाया गया लगभग 2700 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हमने रिसर्च की गई थी। उसमें कुछ प्रेवलेंस डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें 29% को पाया गया कि वो माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन उनमें पाया गया, 16% 16.4% लोगों को मॉडरेट इंटरनेट एडिक्शन पाया गया और 0.5% लोगों को सिवियर इंटरनेट एडिक्शन पाया गया। और उसमें ये पाया गया कुछ रिस्क फैक्टर भी पाए गए कि तो इसमें ये पाया गया कि जो बॉयज हैं, जो मेल यूथ है, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं और जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और जो कि लगभग 3 से ज़्यादा घंटे इंटरनेट का यूज़ या स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं अपने आनंद लेने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या कोई और एक्टिविटीज़ के लिए, वो ज़्यादा रिस्क में हैं।
1: अच्छा।
2: और एक साइकोलॉजिकल समस्या और जो आगे उभर के आ रही है वो है डिप्रेशन। वो ये भी देखा गया है कि स्टडी में जिन लोगों को डिप्रेशन था उन लोगों का ज़्यादा रिस्क बन जाता है स्मार्टफोन को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने का, जैसे बोलते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन होने के उनको ज़्यादा रिस्क है। तो ये कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। और एक हमने शट क्लिनिक निमहन से 2015 में एक सर्वे हमने बैंगलोर और आसपास के जो सब अर्बन एरिया थे, रूरल एरियाज में, वहाँ किया था। और ये सर्वे 2755 लोगों पे किया गया था, एज ग्रुप था 18 से 30 साल। और इसमें हमने क्या पाया गया कि इसमें 1.3% लोगों को इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, 4.1% लोगों को स्मार्टफोन एडिक्शन पाया गया, 3.5% लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स एडिक्शन पाया गया, 4% लोगों को शॉपिंग एडिक्शन पाया गया, गैम्बलिंग एडिक्शन जिसे बोलते हैं 1.2% पाया गया और वीडियो गेम एडिक्शन 7%।
1: अच्छा, तो क्या कहते हैं आपकी स्टडी के ये जो आंकड़े अभी आपने बताए, तो कौन से स्टेज पे है हम अभी?
2: ये आप मान सकते हैं कि एक कम्युनिटी में तीनों तरह के सिवियरिटी पाई जा रही है, माइल्ड भी हैं, मॉडरेट भी हैं और सिवियर भी हैं।
1: अच्छा।
2: तो जो माइल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 27 से 29% लोग माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन है जो भी असेसमेंट जो रिसर्च की गई है इंडिया में, और लगभग 16% लोग हैं जो कि मॉडरेट हैं। तो अगर देखा जाए तो सब ज़्यादातर भी माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में है। और इस चीज़ को अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया गया, विशेषज्ञों ने नहीं ध्यान दिया और बाकी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि स्कूल में टीचर्स, घर पे पेरेंट्स और बाकी हॉस्पिटल्स में मनोवैज्ञानिक, इन सभी को इस समस्या से मिलकर जूझना पड़ेगा। इससे हमें जूझने की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आ पाते हैं, जिनको कि मॉडरेट या सीवियर नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे हेल्प लेने के लिए। लेकिन जो माइल्ड हैं वो हो सकता है कि हमारे पास ना भी पहुँचें, वो एक्सेस होगा, वो स्कूल में है, वो कॉलेजेस में है और वो घर पे हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको तो जो माइल्ड है वो धीरे धीरे मॉडरेट बनेंगे और जो मॉडरेट हैं वो धीरे धीरे सिवियर की तरफ जा सकते हैं।
1: करेक्ट, वो शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर अभी इतना सब कुछ आपने बताया तो इसका मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करने से शारीरिक और मानसिक रूप पे क्या असर पड़ता है?
2: तो इसमें हमने ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी तकलीफें आपको हो जाती हैं, जैसे कि कुछ तरह के फिनोमिना मैं आपको बताऊंगा। एक बोलते हैं इसे कहते हैं कि शारीरिक समस्याओं से, इससे कि आपकी गर्दन में, शोल्डर्स में और पीछे जो स्पाइन है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें पेन होना, इन्फ्लेशन होना।
1: अच्छा।
2: हो जाता है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जब आप सीधे खड़े रहते हैं और आपका अगर सर बिल्कुल टिल्ट नहीं हुआ है, 0 डिग्री पे रहता है, तो लगभग आपका जो मस्तिष्क है वो 4 से 5.5 किलो का उसका वजन होता है। ठीक है, जैसी जैसी ये आपका शरीर का जो मस्तिष्क का जो आपका जो गर्दन का टिल्ट है अगर वो 15 डिग्री होता है तो आपका लगभग जो जो आपकी जो पुल है धरती की तरफ, ग्रेविटेशनल पुल, वो 12 kg का हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये 30 डिग्री का टिल्ट होगा ये 18 kg का हो जाएगा, पुल करेगा, इतना ग्रेविटेशनल पुल होता है। जब 45 डिग्री पे टिल्ट रहेगा आपका नेक तो ये 22 किलो का ग्रेविटेशनल पुल करता है। और जब ये पूरा 60 डिग्री पे, जैसे कि पूरा अपने बिल्कुल ही इमर्स हो जाते हैं अपने गेमिंग एक्टिविटी में, सोशल मीडिया में या कोई वेब सीरीज वॉचिंग में, तो जब ये 60 डिग्री टिल्ट होता है तो लगभग ये 27 kg का ग्रेविटेशनल पुल होता है। और अगर ये एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब अगर ये लंबे समय तक 2 घंटा 3 घंटा भी इस सिचुएशन में रहें और रोज लगभग, तो ये आपको कुछ समय बाद आपकी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स लूज होने लग जाती हैं।
1: अच्छा।
2: और इसकी वजह से आपको पेन और ये नेक में स्पैज़म रहता है। तो ये है टेक्सनेक सिंड्रोम। कुछ लोगों को जो ज़रूरत से ज़्यादा गेमिंग करते हैं उनके हाथ में कार्पल टनल सिंड्रोम, जो जैसे कि जैसे पहले बोलते थे कि जो ज़्यादा टाइप करते हैं उनको होता है, अब जो ज़्यादा गेमिंग करते हैं वो अपनी इंडेक्स फिंगर, थंब और जो सेकंड फिंगर है इसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनके यहाँ पर रिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को ड्राई आइस की शिकायत होती है क्योंकि उनकी आइस ड्राई हो जाती हैं बिकॉज जो गेमिंग है और सोशल मीडिया है ये आपकी जो नॉर्मल ब्लिंकिंग होती है आई मूवमेंट ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आपका एक मिनट में लगभग 20 से 30 बार ये आइज ब्लिंक होती हैं, लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं, स्पेशली जब सोशल मीडिया पर रहते हैं, जब रील्स देखते हैं आप एक के बाद एक, तो ये आइज बंद होने का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं होता।
1: करेक्ट।
2: तो जब वो नहीं होता है तो आपकी आइज ड्राई होने लग जाती हैं और वो वाटरी आइज बन जाती हैं। तो ये कुछ फिजिकल तकलीफें जो हो जाती हैं, कुछ मानसिक इनसे फिनोमिनाज भी निकल के आते हैं, जैसे कि वो जो बोलते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब नो मोबाइल फोबिया। वो तब होता है जब आप अपने एक ऐसा डर, जैसे कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन से कुछ समय दूर रहें तो आप में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लग जाता है। तो रिसर्च ने पाया गया है कि ज़्यादातर ये सभी लोगों में पाया जाता है, और हमें सोचना है कि रिसर्चर्स ने बताया कि ज़्यादातर 72% प्रतिशत लोग जो हैं वो 5 फीट से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं। तो ये इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया। ये किसी की वजह से भी हो सकता है, और कुछ इसमें इंडिया में पब्लिश्ड आंकड़े भी हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आंकड़े देखा जाए तो माइल्ड नोमोफोबिया 41% लोगों में पाया गया, मॉडरेट 42% में, और सिवियर पाया गया है 15.2% लोगों में, यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में 18 to 24 ईयर्स के बीच में।
1: अच्छा।
2: तो इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया। और एक फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं फोमो, आपको पता होगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या और जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, और अगर आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे तो आपसे वो बहुत ही जो फिनोमिना है, जो इवेंट है, वो मिस हो जाएगा और आप जो है उस ग्रुप से लगभग बाहर हो जाएंगे, आपका ग्रुप से वो जो है टच चला जाएगा। इसे बोलते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक मानसिक फिनोमिना है और इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। इसके चलते ही लगभग 56% जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डेटा है मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर अभी दोबारा रिसर्च की जाए तो ये समय जो है मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं रह पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: आखिरी बार हम खुद ही सभी श्रोता सोच सकते हैं, आखिरी बार आप जब आप नहीं सो रहे हो तब आप ऐसा कोई टाइम बताइए जब 2 घंटे आप मोबाइल फोन से दूर रहे हो जगते हुए समय।
1: करेक्ट ना।
2: तो ये है नेक्स्ट फिनोमिना, इसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम ऐसा फिनोमिना होता है जब आपको लगता है कि आपका फोन बज रहा है या फिर आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है आपकी बॉडी के अगेंस्ट, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो ना तो फोन आ रहा होता है, ना तो बज रहा होता है वो, और ना ही वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इसको बुलाता है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो ये हफ्ते में एक आध बार अगर हो जाए तो ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है मनोवैज्ञानिक भाषा में, लेकिन अगर ये 2 या 3 बार हो जाए हफ्ते में, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक लक्षण है, ये फिनोमिना है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि आपको, जो हमने शुरू में 8 चीजें बात करी थी वो क्राइटेरिया, आपको ये एडिक्शन हो सकता है। एक और एक फिनोमिना इसे बोलते हैं फबिंग, हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, फबिंग इसे बोलते हैं कि जब आप किसी से दूसरे से, कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, जब आप किसी दूसरे से बात करना चाह रहे हो तो वो जो है व्यक्ति वो अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझसे बात करो मैं सुन रहा हूँ, वो अपना मोबाइल फोन भी देख रहा है और आपसे बात भी कर रहा है। तो इसे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी है, कोई इसमें हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहे तो इससे 4 फंडामेंटल नीड्स, जिसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं, वो इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस रिश्ते में, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो आप बात करना चाह रहे हैं, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम मिलता है उस रिलेशनशिप में, और धीरे धीरे अगर ये चलता रहे तो ये आपका जो रिश्ता होता है ये इमोशनली लेस सेटिस्फाइंग बन जाता है, और धीरे धीरे फिर वो रिश्ते में जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसको बोलते हैं फबिंग। ये सारे फिनोमिनाज जो हैं, ये मानसिक फिनोमिनाज जो हैं, ये धीरे धीरे मोबाइल फोन एडिक्शन के साथ में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो इसको, इन सब फिजिकल प्रॉब्लम्स और ये मानसिक जो फिनोमिनाज हैं, इनको अगर हम नज़र में रखें तो ये वाकई में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है और इसे एक मानसिक रोग माना जा सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझा है सर आपने, पर हम अपने बच्चों को ये लत लगी है या नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं?
2: हाँ, तो ये यही जैसे मैंने बताया था कि पहला क्राइटेरिया है कि प्री ऑक्यूपेशन, वो सभी काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन है कि जैसे ही उनको टाइम मिले एकदम तुरंत ही वो मोबाइल फोन पे वापस आके बैठ जाएं। सारे प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि दिमाग के पीछे यही लगाव है कि जैसे ही ये काम खत्म होगा सीधा मोबाइल फोन के ऊपर हाथ जाएगा, सीधा मोबाइल फोन में सोशल मीडिया खोलेंगे या कुछ व्हाट्सएप खोलेंगे या इंस्टाग्राम रील खोलेंगे या यूट्यूब रील खोलेंगे, तुरंत उनका वहाँ मन लगता है, उनका मन कोई और चीज करने का कर ही नहीं रहा है। हो सकता है वो तुरंत उठ के बाहर जाके खेलने जा सकते थे, तुरंत कुछ उठ के किचन से कुछ रखा हुआ आ गया है, अच्छी चीज कुछ मिठाई रखी है वो खा सकते थे, हो सकता है कुछ और शैतानी कर सकते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। वो कहाँ मिलेंगे? वो मोबाइल फोन के ऊपर मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं प्रीऑक्यूपेशन। तो ये क्राइटेरिया। दूसरा है, पहले वो सिर्फ आधे घंटा 15 मिनट में उसको मोबाइल फोन को छोड़ देते थे, अब वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं जब तक कि उनसे ये उनके हाथ से लिया ना जाए उनके, तो इसे बोलते हैं टॉलरेंस, जैसे मैंने बताया। तीसरा इनका सिम्टम है कि अब जो है उनको, अगर आप उनसे ले लेते हैं फोन तो उनका मूड जो है खराब हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है उनको, और फिर वो उसको ठीक नहीं कर पाते हैं बिना मोबाइल फोन के। चौथी चीज है कि ये भी देखा गया है कि उनको जब भी वो आपके साथ पेरेंट्स के साथ कुछ मतभेद हो जाए, अनबन हो जाए या घर में कोई और बात हो जाए और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं, तो वो अपना मूड सही करने के लिए बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर फोन दो, मुझे थोड़ी देर फोन देखना है। जब माँ पूछते हैं क्यों देखना है तो कहते हैं नहीं मुझे फोन दे दो, मैं फोन देखने के बाद मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथी चीज है कि जब उनसे ये, और जब भी देखा जाए कि अगर उनसे बोला जाए कि अभी आधा घंटा हो गया है अभी से बंद करके आ जाओ, तो उनसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग, खुद से कंट्रोल नहीं किया जाता, खुद से बंद नहीं किया जाता, स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बंद नहीं हो पा रहा, तो डिफिकल्टी टू कंट्रोल। तो ये सब अगर लक्षण उनमें अगर आपको दिख रहे हैं, और दूसरा कि उनको अब मन नहीं करता है बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ खेलने का, उनको मन नहीं करता अब दूसरों से बात करने का, उनको मन नहीं करता कोई और घर में काम करने का, हाथ बटाने का, उनको लगता है वो टाइम जो मुझे मिला है फ्री वो सारा टाइम मैं इसमें समर्पित कर दूं।
1: बिल्कुल।
2: तो ये अगर उनको लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं, इनमें से अगर 8 लक्षण बताए थे, इनमें से अगर 5 भी हैं तो ये आप मतलब समझ सकते हैं कि वो एक रिस्क पे हैं, उनको सहायता की जरूरत है।
1: अच्छा, तो सर इस पे अभी कंट्रोल कैसे पाए हम?
2: ओके, तो इन पे कंट्रोल के लिए हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स, मतलब हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो है लेकिन हमें उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास एक्सेस तो आ गया है लेकिन उसको यूज कैसे करें उसका एक्सेस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो इसमें हम युवकों को और जो एडोलेसेंट्स हैं इस उम्र में उनको हम कुछ स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि एक होता है स्किल जिसमें बोलते हैं फोन बास्केट स्किल।
1: अच्छा,
2: उसमें जब ये फैमिली मेंबर्स को भी बताना पड़ता है, जरूरी है कि सभी जो फैमिली हैं इंक्लूडिंग युवक जो है उसमें, वो शाम को हमें एक टाइम डिसाइड करना है, हो सकता है 7 बजे या हो सकता है 8 बजे या कुछ एक समय लगभग, उस टाइम पे सारे जो अपने फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है या और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, उसको उस टोकरी के अंदर डाल देना। उसके बाद उसको वहां से निकालना नहीं है अगले दिन सुबह तक।
1: अच्छा,
2: अगर बीच में फोन बजेगा तो उठा सकते हैं, लेकिन जो मैसेज आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई इंस्टाग्राम पे फीड आई, फेसबुक पे फीड आई, स्नैपचैट से कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो कुछ नहीं चेक होगा। अब जो टाइम बचा है चाहे वो 8 बजे हो चाहे 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक, वो सारा आपने ऑफलाइन एक्टिविटीज में बिताना है।
1: अच्छा,
2: तो ये इसे बोलते हैं फोन बास्केट स्किल। सेकेंड होता है कि अपने सेम शाम के समय या पूरे दिन आपको कोशिश करनी है कि अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उसको साइलेंट मोड में डाल देना है। तीसरा है, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड रिस्पांस, मतलब हमें हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है इन अपने स्मार्टफोन पे रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर फोन देखें। ये काफी मुश्किल और इम्पॉसिबल लगता है लेकिन नहीं तो फिर ये प्रीऑक्यूपेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा,
2: तो कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर अपना देख सकें मोबाइल फोन, अगर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का है उसमें लिखना पड़ेगा आपको, अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं जो है अपना मोबाइल फोन मैसेजेस के लिए इस समय देखूंगा। 3 घंटे अगर ज्यादा लगता है 2 घंटे, तो अगर किसी को उससे ज्यादा तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो है, तो अगर बहुत ज्यादा तुरंत चाहिए तो उसमें लिखना पड़ेगा कि अगर तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो कृपया कॉल करें, जिससे कि आप फ्री हो जाएं। नहीं तो हमेशा आप एक उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, पूरा दिन आप उसी को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। चौथा है कि जब भी आप दूसरों से बात करें तो मोबाइल फ़ोन को सीधा पॉकेट में डाल के बात करें, हाथ में रख के बात नहीं करें। इससे आपके जो रिश्ते हैं वो लेस सेटिस्फाइंग बनते जा रहे हैं और इनसे जो है आपके जो रिश्तों से जो आपको पहले खुशी मिला करती थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आपको ये लगने लगा है, सबको जो भी इस्तेमाल करते हैं फ़ोन, कि ये स्मार्टफोन से ज़्यादा खुशी मिलती है, स्मार्टफोन से यूज़ करने ज़्यादा आनंद मिलता है, तो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाए। और एक स्किल है, उसे बोलते हैं नो फोन जोन्स। घर में जो है पेरेंट्स को और युवकों को हमें कॉमनली डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बेडरूम है और जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पे फोन किसी का भी नहीं जाएगा, ना पेरेंट्स का जाएगा और ना ही बच्चों का जाएगा। तो उसको नो फोन जोन डिक्लेयर करना। और आखिरी है, हम बोलते हैं जैसे हम उपवास रखते हैं खाने का उपवास, उसी तरह से डिजिटल फास्टिंग करना।
1: अच्छा,
2: तो डिजिटल फास्टिंग में हम पूरा दिन के लिए प्रपोज करते हैं लेकिन ये कई बार नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। तो जो सक्सेसफुल हुआ है हमने देखा है अपने युवकों में, हमने हमारे क्लिनिक में, वो आधे दिन सुबह उठते हैं लगभग जब भी 9 बजे या 7 बजे उठते हैं, वहाँ से लेके 5-6 घंटा 1-2 बजे तक वो कर पाते हैं। तो अगर कहीं से भी आप शुरुआत करते हैं 2-3 घंटे से ही फास्टिंग करना तो अच्छी बात है। देखिए कि कितने देर तक आप जा सकते हैं, हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कोई आधा दिन जो है आप फास्टिंग अगर कर सकें, क्योंकि इससे जो है आपको जो ये जो टेक्नोलॉजी यूज है या स्मार्टफोन एडिक्शन है इससे आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो ये कुछ हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं और इसे में लर्न करना भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लर्न करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरह से इसके न्यू एप्लीकेशंस और फीचर्स आ रहे हैं ये आपको यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रही है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने आखिर में कि टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज़ कर रहे, हमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू और आज के इस विशेष प्रोग्राम में मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बात चल रही है। हमारे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने अब तक डिस्कस की और ये जो मोबाइल एडिक्शन है उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है वो क्या है और इसे दैनिक जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं?
2: जो डिजिटल डिटॉक्स है ये अभी मैंने जो पहले बताया कि हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स, उसका एक नेक्स्ट लेवल है।
1: अच्छा,
2: जैसे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसमें हमें कुछ समय तक, हमें पहले से निर्धारित करें कि हमें कितने समय तक इसका यूज नहीं करना है और उसको हमें उससे दूर रहना है। तो मिनिमम जो होता है वो कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ता है 3 घंटे से डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को। डिटॉक्स मतलब जब हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें, जब हम दूर रहेंगे तो हमें वो समय उससे फ्री मिलेगा और उस टाइम पे हम जो भी अपनी बाकी दिनचर्या के कार्य हैं वो करने हैं वो सारे हमें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं और मैं कुछ स्टडीज़ के ऊपर आपको एक समरी में बताना चाहूँगा। ये जो स्टडीज़ की गई हैं ये बाकी बहुत सारे देशों में की गई हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, UK और साउथ कोरिया में ये वैज्ञानिक प्रयोग किया गया है कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जब करा आता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो पहला तो पाया गया कि अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं अपने आप को और कुछ निर्धारित समय के लिए अपने आप से प्रण लेते हैं कि हमें यूज़ नहीं करना है टेक्नोलॉजी, तो ये पाया गया कि जो ड्यूरेशन ऑफ यूज़ है, मतलब जितने समय तक आप यूज़ करते थे पहले अपना स्मार्टफोन, वो 6 स्टडी में उन्होंने प्रयोग किया और 6 की 6 में पाया गया कि ये सफल रहा। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन। मोबाइल फ़ोन जो होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही कम कर देता है, हमारा खुद पे, हमारा खुद मनोबल पे खुद रेगुलेट करना चीज़ों को बहुत पुअर हो जाता है। तो ये पाया गया कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया और उन्हें पाया गया कि 1 स्टडी में वो सक्सेसफुल रहा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है प्रोकास्टिनेशन, मतलब जो काम आप डिले कर देते हैं कि इसे बाद में करेंगे, ये इसी की वजह से होता है। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पाया गया, 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया और दोनों की दोनों में ये बेहतर हो गया। चौथा जो था स्लीप, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी जो है स्लीप जो है वो बेहतर हो गई, उन्होंने 1 स्टडी में पाया गया कि ये बेहतर हो गई। ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो पाया गया 8 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया था और उन्हें 4 में से 8 में ये पाया गया कि लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है लाइफ से वो बेहतर हो गया जब उन्होंने ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किया। तो ये सब चीज़ों से करने से ये पाया गया है कि आपकी जो बाकी चीज़ों में जो डिफ़िकल्टी चल रही हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है कि कुछ निर्धारित समय के लिए आप जो है धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल फास्टिंग से, लेकिन डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन मिनिमम 3 घंटे स्टार्ट होता है और ये 2 हफ्ते तक जाता है। जिनको जो माइल्ड टू मॉडरेट डिफिकल्टी, जिनको माइल्ड है, वो कम से कम दिन का अपना 3 घंटा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें।
1: अच्छा।
2: जो मॉडरेट सिवियरिटी के लोग हैं जिनको लगता है कि उनमें ज्यादा है, अगर कोई भी 3 घंटे से अराउंड कर रहा है तो उसे माइल्ड कैटेगरी माना जाएगा। जो 3 से 6 घंटे यूज करता है लेजर टाइम एक्टिविटीज के लिए उसको मॉडरेट कैटेगरी मान सकते हैं। जो 6 घंटे से ज्यादा या 5 या 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर रहा है, काम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लेजर टाइम एक्टिविटीज के लिए, वो सिवियर कैटेगरी में लगभग आ रहा है, तो उसको जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है कम से कम धीरे धीरे स्टार्ट करके उसको दिन का कम से कम कुछ नहीं तो 5 घंटा या 4 घंटा से शुरू करना है धीरे धीरे। तो इसी तरह से अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है, और बाकी जो चीज़ें जिनमें आपको टाइम देना है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पढ़ाई में, आपके ऑफिस के कार्य में, कोई नया स्किल लर्न करने के लिए, कोई नई हॉबीज लर्न करने के लिए, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शंस के लिए, फैमिली रिचुअल्स के लिए, क्योंकि ये सारा टाइम यहीं से निकाल के आपने मोबाइल फ़ोन को दिया है। और अगर आप इन एक्टिविटीज़ में टाइम अगर नहीं देंगे तो मानसिक तकलीफें और मानसिक डिफिकल्टीज, चैलेंजेस इन सारे रिलेशनशिप्स में आएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, ऑफिस वर्क में हो, एकेडमिक वर्क में हो, अपनी फ्रेंडशिप्स में हो, या फिर आपके कोई नए स्किल लर्निंग की एक्टिविटीज़ में हो। और हमने यही पाया गया है कि देखा गया रिसर्च में कि न्यू स्किल लर्निंग अब जो युवकों में है धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि सारा समय जो फ्री समय मिलता था उन्हें वो अब स्मार्टफोन में जा रहा है।
1: करेक्ट सर, हम हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे, कुछ इजी टिप्स जिससे मोबाइल उपयोग का वो कम यूज़ करें?
2: ओके, सो इजी टिप्स में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कोशिश करें कि एक तो नो फोन जोन्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने घर में निर्धारित करें कि नो फोन जोन्स कौन सी हो सकती हैं। वो हर किसी के घर में अलग अलग हो सकती हैं, तो पहले नो फोन जोन डिसाइड कीजिए, जिससे कि आपको मोबाइल फोन यूज करने में रेगुलेशन आएगा। और ये हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसमें एब्सटिनेंस नहीं कर सकते। एब्सटिनेंस मतलब पूरा इससे परहेज नहीं कर सकते हैं।
1: अच्छा,
2: हमको यूज तो करना पड़ेगा
1: बिल्कुल,
2: लेकिन उसको हम रेगुलेट कैसे करें? तो पहला है कि नो फोन जोन्स अपने घर में निर्धारित करें, अपने लिए निर्धारित करें, जिससे कि आपका टेक्नोलॉजी पे यूज, जो टेक्नोलॉजी पे जो रेगुलेशन है वो बढ़े, ना कि टेक्नोलॉजी आपको कंज्यूम करे। दूसरा है, जैसे मैंने डिसाइड किया कि अपने नोटिफिकेशन जो है कोशिश करें इनको अगर साइलेंट मोड में रखें। तीसरा है कि अपना डेली डिसाइड करना है कि इवनिंग में किस समय के बाद आप जो है नोटिफिकेशंस देखेंगे नहीं। अच्छा। शाम में कुछ समय के बाद। चौथा है कि हमें, जैसे मैंने बताया फोन बास्केट का स्किल, तो शाम में अपना फोन जो है हमें एक बास्केट के अंदर डाल देना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो, और ऑफलाइन एक्टिविटीज में हमें समय बिताने की कोशिश करनी, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, या कोई नया स्किल लर्न करना हो, या कोई और माध्यम से हमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना हो, वो हमें वापस सीखना पड़ेगा। पांचवी चीज़, जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करें कि फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखें और फिर बात करें। इससे आपके रिश्तों में जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा वो बेहतर होगा, और आपका रिश्ता भी घनिष्ठ बनेगा। नहीं तो वो धीरे धीरे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और उसकी वजह से फिर आपका मन करता है कि ठीक है मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। और एक और है कि डिजिटल फास्टिंग, जो बताया था मैंने कि डिजिटल फास्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अपने खुद पे नियंत्रण जो है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ रेगुलेशन, वो बेहतर हो जाएगा। तो हो सके तो अगर आप मिनिमम, या अगर आप 1 घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 घंटे से एटलीस्ट स्टार्ट करें।
1: अच्छा।
2: कोशिश करें कि 2 घंटा बिना मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें वे बिताना है आपको प्रतिदिन। धीरे धीरे उससे स्टार्ट करें और फिर देखें उसको बढ़ाएं। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज़ आप धीरे धीरे अपने दिनचर्या में, अपने डेली शेड्यूल में लाएंगे तो वो बेहतर होगा। और हाँ, रात को डिनर के बाद फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जब वो रात के में जब ये फ़ोन हाथ में आ जाता है तो वो डिनर के बाद में वो कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है।
1: बिल्कुल।
2: और ये स्टडीज़ में पाया गया कि लगभग इंडिया में 60-90 मिनट्स का स्लीप का डिले हो गया है, स्लीप स्टार्ट होने में डिले हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग इशू है अभी का। सबको मोबाइल की इतनी आदत लग चुकी है कि वो अभी छुड़वाना, मेरे ख्याल से अभी काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, तो वो भी लेना पड़ता है। और उसको लेके, मतलब मोबाइल का यूज़ जो हम कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन जो हमें हुआ है, उसको लेके क्या हो सकता है मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सर। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।
2: या थैंक यू।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो हम केली वेणुधोनी 90.4 एफएम पे सुन रहे थे। हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन आनंद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उसी के साथ साथ निमांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में वो कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है जहाँ इंटरनेट सोशल मीडिया गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा वो स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। उनको हम सुन रहे

थे और आज का विषय था मोबाइल एडिक्शन। उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणु ध्वनि 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

थे जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी? ये

0: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।
1: दारा, दारा, दारा, दारा।

बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी? ये दिल

0: तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?
1: There is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
2: Doctor Ujjav को heal attend it. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
1: Sir, there is an emergency case of Mehr Garewal. Accident है.
2: क्या नाम बता?
1: Mehr Garewal.
2: मुझे ले चलो.
1: Come.

हैं कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते, फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।

बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी? ये दिल

गुड इवनिंग आन, नमस्कार दोस्तों, आप आए, बाहर आई, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, अरे मेरा मतलब है स्वागत है आपका हमारे शो बी रिलैक्स में। और आप ट्यून कर चुके हैं बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। इन टुडेज एपिसोड वी गोना एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, सेल्फ केयर एंड शेयरिंग प्रैक्टिस एंड शेयरिंग प्रैक्टिकल टिप्स फॉर मेंटेनिंग इमोशनल वेलबींग। आज के इस एपिसोड में हम ये कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाए, जिससे आपको भी एक बेटर वे मिले बात करने का। सो सिट बैक एंड रिलैक्स और सुनते रहिए हमारा शो वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

एंड वेलकम बैक टू अवर शो बी रिलैक्स और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज मेंटल हेल्थ के बारे में। लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा टुगेदर। वी विल बी डिस्कसिंग मोर मिसकंसेप्शन अबाउट मेंटल हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग हेल्प। दोस्तों जैसे फिजिकल हेल्प इज इम्पोर्टेंट, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है हमें अपनी डेली रूटीन परफॉर्म करने में और उनको समझने में। एंड टू बिल्ड रिलेशन एंड स्टे पॉजिटिव वी नीड आवर मेंटल हेल्थ टू बी परफेक्टली फाइन। चलिए बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की कुछ रंग बिरंगे गानों के बाद। बने रहिए हमारे साथ ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु वितार जे आयुष। आज का हमारा जरूरी टॉपिक मेंटल हेल्थ पर चर्चा चल रही है। मैं आपको कुछ चैलेंजेस बताता हूं जो आ सकते हैं शायद आपको अगर आप मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, जैसे एंग्जाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर जिसका मतलब होता है आपके मूड स्विंग्स होते रहना, आपके मूड में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, स्किजोफ्रेनिया, इस शब्द का मतलब होता है कि आपकी सोचने की क्षमता थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ये सब चैलेंजेस आप फेस करते हैं अगर आप किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं तो, और भी कई सारे एंड मेनी मोर। ये सारी कंडीशंस किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। बात करेंगे आगे हाउ यू कैन सीक हेल्प फॉर ऑल दिस कॉसेस आफ्टर दिस सुपर हिट सॉन्ग्स। बने रहिए ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 केएलई कनसु।

अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

दोस्तों, अगर आप किसी भी कंडीशंस में से गुजर रहे, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से या कंडीशन से गुजर रहे जो आपकी मेंटल हेल्थ पर ऐसा असर डाल रही है जिससे आप परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं, हमेशा हेल्प लेने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी मानसिक तनाव में हैं, आप चाहे तो आपके दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, आपके परिवार से बात कर सकते हैं, और फिर आप मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से भी डिस्कस कर सकते हैं, जो कि थेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं और काउंसलर्स भी हो सकते हैं, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं और सपोर्ट मांग सकते हैं, जो आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट देने में बहुत मदद करेंगे। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आपका रिलीज कर देता हूँ आपको कुछ एंटरटेनिंग सॉन्ग सुनाकर, तो आपका मूड एकदम हल्का हो जाएगा। और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं वेणु धोनी 90.4 KLE कनसु, मेरे यानी आपके प्यारे दुलारे आरजे आयुष के साथ। दोस्तों, आजकल इतनी प्रोग्रेस होने के बाद भी देयर इज अ स्टिग्मा अबाउट मेंटल हेल्थ। एक कंडीशन बनी हुई है लोगों के दिमाग में। हमें खुद को और दूसरों को इस विषय पर एजुकेट करना चाहिए। शोइंग एम्पैथी एंड स्पीकिंग ओपनली अबाउट मेंटल हेल्थ कैन हेल्प टू ब्रेक डाउन बैरियर्स, और आप मदद कर सकेंगे एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट करने में। हमें पब्लिक में भी ऐसे अवेयरनेस फैलाना चाहिए, लोगों का जो मिसकंसेप्शन होता है उसको खत्म करना चाहिए, और लोग ओपनली इस बारे में बात करेंगे और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे अगर आप उनका मिसकंसेप्शन जो है वो खत्म कर देंगे। और अब करेंगे हम एक छोटा सा सॉन्ग ब्रेक। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

and welcome back, listeners, to your favorite show, Be Relax, only on Venu Dhoni 90.4 KLE Kanasu. मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ और हमारी बात हो रही है एक बहुत ही जरूरी टॉपिक मेंटल हेल्थ पर. आपको कुछ और टिप्स बताता हूँ टू बिकम मोर फोकस्ड व्हेन यू आर सफरिंग थ्रू दिस. इंगेजिंग इन सेल्फ प्रैक्टिसेस लाइक माइंडफुलनेस, एक्सरसाइजेस, प्रॉपर स्लीप और आप अपने हॉबीज को भी फॉलो कर सकते हैं. आपकी मेंटल हेल्थ इससे हमेशा हेल्दी रहेगी. आप अपने परिवार के साथ या जो आपके करीबी है उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारिए, जिससे आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा. आप इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे उनसे. एंड इट्स टाइम टू मेक यू ऑल लिसन सम सुपर हिट सॉन्ग्स. सुनते रहिए वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू.

दोस्तों, आप जहां काम करते हैं मींस योर वर्कप्लेस, आप वहां पर भी किसी से बात कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ कैन बी बेटर इन अ वर्कप्लेस, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। क्रिएटिंग मेंटली हेल्दी वर्कप्लेसेस एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉइज वेलबींग कैन इनहांस प्रोडक्टिविटी, जी हां, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल वर्क एटमॉस्फेयर। तो थोड़ा अगर आपके एम्प्लॉइज अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें खुश रखिए थोड़ा सा, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप अच्छा काम करिए और अपने बॉस को खुश रखिए, तो आपका तालमेल वहां पे जो है थोड़ा बना रहेगा। और इसी खुशी को दुगना करेंगे आपको कुछ जबरदस्त गाने सुनने के बाद। तो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

है लाइफ में, तो टेंशन मत लीजिए, खुशियाँ बहुत जल्दी आएगी। हमेशा याद रखिए, ऊपर वाला अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बंदा झेलने के काबिल होता है। तो अगर आप में इतनी प्रॉब्लम्स है तो आप इस काबिल है और आप इस दौर से बड़ी ही जल्दी गुजर जाएंगे। तो मेंटल स्ट्रेस लेने से कुछ फायदा नहीं है, तो अपना स्ट्रेस को कर दीजिए छू मंतर। इट्स लाइक अ टेस्ट हाउ यू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू नो एग्जाम पेपर जैसे होता है, आप एग्जाम में जैसे एग्जाम देते हैं, इट्स सिमिलर टू दैट। इफ यू हैव स्ट्रेस यू विल गेट ओवर इट। बस खुद को अकेला ना समझे, मस्त मौला रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु धोनी 90.4 KLE कनसु। मिलेंगे बहुत ही जल्द कुछ और टॉपिक्स और स्टोरीज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार को थोड़ा वक्त दीजिए, मजे कीजिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। यादों की बारात का खूबसूरत सा सफर लेके आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। दोस्तों, आज के शो में भी हम पिछले बार की ही थीम फॉलो करने वाले हैं, जो है नजर। अरे भाई, नजरों की बातें, नजरों के इशारे, नजरों से अपने चाहने वाले को ढूंढना, तलाशना और प्यार को आगे बढ़ाना। इसमें इतने सारे गाने हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे भावनाएं, इतनी सारी इन हरकतों में इतनी सारी भावनाएं हैं, इतना सारा प्यार है कि नजरों के ऊपर गाने खत्म ही नहीं होते। तो इस हफ्ते हम नजरों के ऊपर ही गाने सुनने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का शो एक क्लासिक सॉन्ग से, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। अनपथ फिल्म का ये गाना है जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया है, म्यूजिक दिया है मदन मोहन ने और लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने। माला सिन्हा और धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माया गया ये बेहद खूबसूरत सा गाना मेरा भी फेवरेट है। जब नजरों की तलाश खत्म होती है तो अपनी नजरों को किसी के प्यार भरी नजरों का साथ मिलने लगता है, और ये एहसास, ये साथ, ये प्यार कैसा फील होता है, यही इस गाने में बताया गया है। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, आप लौट के आइए क्योंकि आज के सफर में नजरों से नजरें मिलाएंगे हम और कई गाने सुनने वाले हैं हम। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु, और यादों की बारात का खूबसूरत सा सफर लेके आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। और आज भी हम नजरों की बातें कर रहे हैं। दिल से दिल का रिश्ता तो हम समझते हैं, नजरों से नजरों का नाता भी हम समझते हैं, पर दिल का नजरों से और नजरों का दिल से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। अगला गाना है दिल की नजर, अनारी फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना है जो 1959 में रिलीज हुई थी। इसे म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने, लिखा है शैलेंद्र ने, आवाज है लता और मुकेश की, और फिल्माया गया है राज कपूर और नरगिस के ऊपर। एक बात कहूँ, इस गाने में राज कपूर साहब बहुत ही इनोसेंट दिख रहे हैं। नो डाउट वो उस जमाने के ऐसे हीरो थे जिनके ऊपर कई नौजवान लड़कियां अपनी जान छिड़कती थी। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना और उस दौर को याद करते हैं। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु।

आपकी हमसफर स्वरा आपके लिए खूबसूरत सा शो लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। अपने साथी को, अपने प्यार को और प्यार भरे रिश्ते को नजर न लग जाए किसी की, बस यही दुआ सभी प्रेमी प्रेमिकाएं करते रहते हैं। अगला गाना है नजर न लग जाए, नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना है जिसे फिल्माया गया है माला सिन्हा और बिस्वजीत के ऊपर। गाया है मोहम्मद रफी साहब ने, म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और लिखा है आनंद बख्शी ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

तुम्हारा साथ पाने के लिए हम हर सितम सह जाएंगे, चाहे हम पे नजरों से बिजलियां भी गिरा दो, हम हर कहर सह जाएंगे। आपका साथ पाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मजाक कर रही थी, परेशान मत होना, मैं आपके हाथ धो के पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ। ये तो इस गाने में कहा गया है, शौक नजरों की बिजलियाँ। वो कौन थी, इस फिल्म का ये गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी। मनोज कुमार और साधना के ऊपर ये गाना फिल्माया गया है। म्यूजिक दिया है मदन मोहन ने और गाया है आशा भोसले जी ने। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

अगला गाना है तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। दो गलियां इस फिल्म का ये गाना है जो 1968 में रिलीज हुई थी। माला सिन्हा और बिस्वजीत के ऊपर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गाना। नजरें हमेशा प्यार और इकरार ही बयां नहीं करती दोस्तों, कभी कभी तकरार भी करती है, गुस्सा भी करती है और खफा भी हो जाती है। पर ये नजरों वाले गुस्से को शांत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू।

दोस्तों, यादों की बारात का हमारा खूबसूरत सा सफर जारी है और मैं हूँ आपकी हम सफर होस्ट और दोस्त आरजे स्वरा। जब आपको अपने प्यार की याद आती है तो दिल बेचैन हो जाता है, नजरें खोई खोई रहती है और हर जगह बस आपका प्यार ही नजर आता है। अब इसमें आपके प्यार का दोष है या नजरों का दोष है ये तो नहीं पता, चलो पता करने की कोशिश करते हैं। बेचैन दिल खोई सी नजर, यहूदी फिल्म का ये गाना है जो 1958 में रिलीज हुई थी। इसे आवाज दिया है लता मंगेशकर और गीता दत्त ने, म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और लिखा है शैलेंद्र जी ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLU का।

दोस्तों, क्या आप कभी किसी की नजरों का शिकार हुए हो? किसी की नजरों का शिकार होना क्या होता है, कितनी बेकरारी होती है और इसी बेकरारी में भी एक करार होता है, यही इस गाने में सुनाया गया है। देखते तेरी नजर। हावड़ा ब्रिज का ये खूबसूरत सा गाना 1958 में रिलीज हुआ था। मधुबाला और अशोक कुमार के ऊपर ये गाना फिल्माया गया है। म्यूजिक डायरेक्टर है ओपी नायर और गाया है आशा भोसले ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसू और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूर्णधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।